0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बुतुर्क आप पुजी वयो ISPR मौजूद फील्ड मार्शल जो तुर्क जो दौरो बिन्हीं मुल्क विच में दिफाई अस्करी सरकार के वधी गति उठाइंदो। सऊदी अरब पाकिस्तान में चावर गाढ़ो गोश्त प्रोसेस फूड फ्रूट ए गाह घुराण जो अदब बदाय 3 अरब डॉलर मुकर्र कर छो। पाकिस्तान सऊदी अरब विच में जरें गिजाई तहफुजी भाईवारी के हथी जन के हवाले से जारी कल गजल पधराई में जाना वो है तो पाकिस्तान की दावत सऊदी अरब के मौलियात पानी जराइत वे वजीर अब्दुलरहमान ए फजली की क्यादत में सऊदी वफद 26-28 अगस्त इस्लामाबाद जो दौरो किया। बिन्हीं धुरन अजम वर्जायो तो जरें गिजाई शयन के इम्पोर्ट के इंदड़ 2 साल दौरान 3 अरब डॉलर तक पहुंचाया वो।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी। बस किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी। बस वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकाई, कैसे किस्मत को लाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad at the martial mad, mera instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take second position. I'm getting ballistic, cataclysmic, bilicolously, dekho meticulously. Love mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se. Baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone. Tucking the sheep up knee off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

ऐं साईं मुंहिंजा असां तव्हांखे वरी अगस्त महीने जी अॼु 31 तारीख़ आहे यानी आख़िरी तारीख़ आहे अगस्त महीने जी। अगस्त महीने जे हवाले सां असां अवां ताईं थोरी मालूमात पहुचाईंदासीं, कुझु दोस्तनि जी मालूमात में इज़ाफ़ो थींदो। त साईं मुंहिंजा अगस्त महीने जे हवाले सां कुझु मालूमात इहा बि आहे त 4 अगस्त 2000 ते यानी कचहरी जो मोर फनकार महमूद सिद्दीक़ जो विछोड़ थियो, ऐं 4 अगस्त 1967 ईस्वी ते नौजवान शाइर ज़ाहिद दारा अबड़ो यानि दारा हुन जो लक़ब हुयो, तख़ल्लुस हुयो, ज़ात जो अबड़ो, हुन जनम वरितो। ऐं 4 अगस्त 1991 ते नौजवान शाइर इरफान महदी जो लाॾाणो थियो। ऐं साईं मुंहिंजा अगस्त जेको महीनो आहे ईस्वी साल जो 8 महीनो आहे, ऐं हिन अगस्त महीने ते उहो नालो मशहूरु रूमी हुकुमरान अगस्टस जे नाले ते पियो, ऐं अगस्टस जी लफ़्ज़ी माना आहे धाना। हिन महीने दौरान उत्तर अधु गोल में ॾींहं नंढा थींदा आहिनि, ऐं उन जे बरक्स ॾखण अधु गोल में ॾींहं वॾा थींदा आहिनि। हिन महीने में मींहं बि वसनि था, ऐं हिन महीने में 31 ॾींहं थींदा आहिनि। त साईं मुंहिंजा इहा अगस्त महीने जी मालूमात हुई त हुन जो नालो कीअं पियो, मशहूरु रूमी अगस्टस मशहूरु जेको आहे हुकुमरान हुयो उनजो नालो हुयो जंहिंजे करे अगस्त नालो हुन ते पियो। त हीअ मालूमात तव्हांखे ॾिनीसीं, हाणे वरी हिकिड़ो ख़ुशि नगम ॿुधूं पिया अव्हां ना पिया कयूं।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फूड फ्रूट ऐं गाह घुराइण जो हदफ वधाए $3 अरब मुक़रर करे छॾियो पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में। ज़रई ऐं ग़िज़ाई तहफ़ुज़ जी भाईवारी खे हथी ॾियण जे हवाले सां जारी कयल गॾियल पधराई में ॼाणायो वियो आहे त पाकिस्तान जी दावत ते सऊदी अरब जी माहौलियात पाणी ऐं ज़राइत वारे वज़ीर जी क़यादत में सऊदी वफ़द 26-28 अगस्त ताईं इस्लामाबाद जो दौरो कयो। ॿिन्ही धुरियुनि जो अज़म वरिजायो त ज़रई ऐं ग़िज़ाई शयुनि जी इम्पोर्ट खे ईंदड़ 2 सालनि दौरान $3 अरब ताईं पहुचायो वेंदो। वज़ीर आज़म सां सऊदी जे माहौलियात बाबति वज़ीर इंजीनियर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन जी मुलाक़ात, ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं। शहबाज शरीफ चयो त पाक सऊदी ऐं तुर्किया में थियल मके मुआदे बाद टे मुल्क वेझो अची विया आहिनि। मुआदे सां ख़िते में बि अमुन ऐं इताद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सिरजक भाईवार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तिसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइणु घुरिजे। वतन सां मोहबत जो सर्टिफिकेट न घुर्जे, रियासत माउ हूंदी आहे त इहा ई ॾेखारे। मुल्क में गद्दारी ऐं वफ़ादारीअ लाइ मयार तस्लीम न कंदासीं। हीउ मुल्क असांजो आहे, क़ौम खे पाण में न विढ़ायो। मौलाना फज़ल रहमान सखर में जे UIS जे कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे चयो आहे त सूबनि खे विरिहाइण क़ौम खे विरिहाइण आहे। तक़सीम खां सवाइ अवां वटि कुझु बि न आहे। नवां सूबा ठाहिणा आहिनि त अवां वटि कहिड़ी तयारी आहे? शहबाज शरीफ जी हुकूमत आहे। असां त जनरल परवेज़ मुशरफ़ अयूब ख़ान ख़िलाफ़ बि मैदान में आयासीं, जेल में रहियासीं। अवां जेको चओ असां लभे चऊं, ईअं मुमकिन आहे? पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हलंदड़ साल जे आख़िर में शादी जूं तयारियूं। जॾहिं जो चवण आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी आस्ट्रेलिया जे गादी वारे शहर रियाना में मौजूदु आहिनि। मङणी ऐं शादी बाबति आस्ट्रेलिया जे ख़ानदान सां घटि में घटि मुलाक़ातूं थियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं इम्रानी कुंवार केतिरनि ई सालनि खां हिक ॿिए खे सुञाणनि था। शादी हलंदड़ साल जे आख़िर में रियाना में थियण जो इम्कान आहे। पीपल्स पार्टी जे अॻवान मुर्तज़ा वहाब ख़बरुनि खे ग़लति करार ॾींदे चयो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी मङणी ऐं शादी जा बाज़ाबता ऐलान अञा ताईं न आहे कयो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अखियुनि जो पर्दो, कारो पाणी, मोतियो पाणी, उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे कराची सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर शाहिद जमाल सिद्दीकी अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारनि जो माहिर हिकु सर्जन इंडस जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते लाइ मोबाइल नंबर 6619।
1: मोरो, नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज़। जीए FM 88 नेटवर्क।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां वञो मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो हा जी आसमिन अॼु 31 अगस्त आहे सुभाणे आहे 1 सेप्टेंबर त सेप्टेंबर जे हवाले सां थोरी मालूमात आहे उहा अव्हां ताईं पहुचाईंदो हलंदुसि त मुंहिंजा पंहिंजो सुभाणे जेको 1 अगस्त आहे उन हवाले सां मालूमात आहे त 1 अगस्त सिंध जे उन अण विसरंदड़ किरदार जो जेको नालो आहे उहो आहे सैद सालेह मोहम्मद शाह ऐं सैद सालेह मोहम्मद शाह उर्फ ॾाॾो फतेह ख़ान जी 8वीं वर्सी सुभाणे आहे ऐं घणो करे इंसान जे किरदार जो तयन हुन जे जान छॾण खां पोइ ईंदड़ वक़्तु कंदो आहे पर के तारीख़ साज़ माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिन जे किरदार जो तयन संदन जीअरे वक़्त में ई थी वेंदो आहे विछोड़े बाद त तारीख़ मथे वधीक नाज़ कंदी आहे ऐं साईं जा 1 सेप्टेंबर सकाफ़त जी हिकु मुकमिल किरदारु सैद सालेह मोहम्मद शाह उर्फ ॾाॾे फतेह ख़ान जे विसाल जो ॾींहुं आहे जंहिंजी समूरी हयाती सिंधी ॿोली सिंध जी तारीख़ तहज़ीब सकाफ़त लतीफ़ियात ऐं गायकी जी तशरीह कंदे गुज़ारी सैद सालेह मोहम्मद शाह 4 अप्रैल 1938 ते हैदराबाद जे भरिसां ॻोठ दरिया ख़ान बेग मुग़ल में सैद दादन शाह जे घर में जनमु वरितो ऐं प्राइमरी तालीम खां पोइ अदीब आलम जो इम्तिहान पास कयईं शाह साहिब जे ख़ानदान में वॾा शाइर अदीब ऐं आलम थी गुज़रिया जंहिंजी शफ़क़त खेसि ॿोली अदब ऐं सकाफ़त जो शऊर बख़्शियो सैद सालेह मोहम्मद शाह 4 अप्रैल 1958 ते रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ऐं कराचीअ जे अनाउंसर अब्दुल लतीफ़ अब्बासीअ जे मशवरे ते रेडियो हैदराबाद सां ॻंढिजी वियो ऐं रेडियो हैदराबाद ते 40 सालनि ताईं फतेह ख़ान जे किरदार सां कामयाबु रहियो सैद सालेह मोहम्मद शाह आम माण्हूअ खे लतीफ़ जो फ़िक्रु सम्झाइण में वॾी मदद कई संदन हिकु वॾो कारनामो इहो बि आहे त हिन भिटाई साईं जो समूरो कलाम पंहिंजे आवाज़ में रिकॉर्ड करायो हो हीअ सिंध जो अमर आवाज़ ऐं किरदारु 1 सेप्टेंबर याने सुभाणे जेको ॾींहुं आहे उन ते 2007 में 70 सालनि जी उमिरि में लॾणु कयो त साईं जा साईं सैद सालेह मोहम्मद शाह जे हवाले सां मां ताईं मालूमात पहुचाएसीं ॾाॾे फतेह ख़ान जी कचहरी हलंदी हुई पंहिंजो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते ऐं PTV ते बि प्रोग्राम कंदो हो कचहरी प्रोग्राम उते बि घणो पंहिंजो ॾिठोसीं ऐं रेडियो ते ॿुधोसीं ऐं लतीफ़ खे जेको हुन साईं जन पंहिंजे आवाज़ में शायरी जी रूप खे ॾिनो आहे पंहिंजो आवाज़ु त लतीफ़ सरकार जो कलाम ॿुधूं पिया गॾियल आवाज़ में

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

वासियुनि जा प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह, ऐं रोशन सुबुह में जेको मां तव्हांखे अॼु जो सवाल नोट करायो हुयो त गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते मल्हायो वेंदो आहे, त उहा तारीख़ आहे 30 अगस्त, या जेका कल्ह तारीख़ गुज़री चुकी त उहो 30 अगस्त जो कल्ह हिकु ॾींहुं हुयो, अॼु 31 अगस्त आहे, ऐं 31 अगस्त जे हवाले सां अव्हां ताईं कुझु मालूमातूं पहुचाईसीं अगस्त जे हवाले सां, पर बहरहाल सवाल जो जेको सही जवाबु हुयो उहो हुयो 30 अगस्त। उन हवाले सां समय जा हर इंसान हर अहसानमंद इंसान खे उहो अहसासु ज़रूरु तड़पाईंदो आहे त जिन जा मिट माइट गुम थी वञनि था तन मथां छा न गुज़रंदो हूंदो, तकलीफ़ हूंदी, परेशानी हूंदी, हुननि जो हिकु हिकु पल कंहिं अज़ाब खां घटि न हूंदो, ऐं ॿिए तरफ़ जेकी माण्हू गुम थी वञनि था या गुम कया वञनि था उहे बि तमामु वॾी इज़त भोगींदा हूंदा। उन करे 30 अगस्त ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गुम थी वियल माण्हुनि ऐं हिरासत में वरितल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि। हिन ॾींहुं पहिरियों भेरो लातीनी अमरीका जे मुल्क स्टारिका में खुफ़िया हिरासत में जे ख़िलाफ़ कमु कंदड़ हिकु तनज़ीम पारां सन 1981 ईस्वी में मल्हायो वियो, जिन खां पोइ हीउ ॾींहुं हर साल 30 अगस्त ते मल्हायो वेंदो आहे। त साईं जा वाक़ई अहिड़ा माण्हू जेके गुम थी वेंदा आहिनि या अहिड़ा माण्हू जेके गुम कया वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे घर मां उहे माण्हू गुम हूंदा, ऐं हिकिड़ो माण्हू वफ़ात करे वञे थो, हिकिड़ो माण्हू हीअ दुनिया छॾे वञे थो, त चवंदा आहिनि त उहो हिकु सूर आहे। पर जेको माण्हू गुम थी वञे थो, पर जेको ॿारड़ा नंढड़ा ॿारड़ा बि गुम थी वेंदा आहिनि ऐं न लभंदा आहिनि, त उन्हनि जो सूर सॼी ज़िंदगी न वेंदो आहे। इहो उन अबेमण खां पुछो, इहो सूर उन पंहिंजो वालदेन खां पुछो, मिट माइट खां पुछो, जंहिं चवंदा आहिनि त हंधु उहो सड़े जिते बाहि भरे, छो त जंहिंजा जिगर पाण खां परे हूंदा आहिनि ऐं सॼी ज़िंदगी उहे नाहिनि मोटंदा, गुम थी वेंदा आहिनि या गुम कया वेंदा आहिनि। पर ख़ासि करे असां वरी ॻाल्हि कंदासीं नंढड़नि ॿारनि जी, जेके वीचारा बेसमुझ हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो उन्हनि जी का उमिरि न हूंदी आहे, गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा हूंदा आहिनि जेके वीचारा गुम थी वेंदा आहिनि, न लभंदा आहिनि, के वीचारा किरी पवंदा आहिनि किथे पाणीअ में, कंहिं गटर नालीअ में, या बहरहाल कंहिंखे को नांग भला खाई वेंदो आहे, कंहिंखे को कुतो बिलो चके विझंदो आहे। त कोशिशि कयो पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त कयो त बहितरु आहे, पर गुम थियल ॿार ऐं गुम थियल माण्हू ऐं गुम कयल माण्हुनि जो जेको अहसासु आहे उनखे थींदो आहे जंहिंजे घर जा भाती हूंदा आहिनि।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन के पांजे नालन जो ओसीड़ो कुछ दोस्तन जवाब सही ना आने कुछ दोस्तन जवाब गलत भी ना त कुछ दोस्तन मेहनत पांजी कोशिश करे ओको दुखो भी है जिन जे जवाब गलत थे हन त असा जो पहले नंबर ते दोस्त अजीज सोलंगी भुट्टो सोलंगी नूरमन सोलंगी उनन सा गडा है अरबाब कुंभार मीरपुर खास का दोस्तन जवाब नो मोहम्मद पिंजल लांगा फहीम लांगा नंदड़ी सनूबर लांगा राजी देरो जिले खैरपुर खां कुर्बान खास के अली झंडो मरी खां दोस्त जवाब गलत दिनो रंजन कोरी अली कोरी फरहान कोरी लाल चंद खान जूनी जो कोरी गोठ खां ममन शरीफ छुट्टो नादर खान छुट्टो दरेजी बलोचिस्तान खां खालक लाशारी मीरपुर खास खां इकबाल लाशारी सोराब मंगरियो फरहान मंगरियो नजर महमद मंगरियो गोठ सचिरणो मंगरियो लगे बकापुर खां गुलाब खान कुंभर शोएब गुलाम रसूल कुंभर उन सा गड है नादर खान कंगो गोठ कंगन खां चनेसर भेण आजाद भेण मोरे खां फकीर महरम जतोई गोठ आगा खान जतोई खां अहमद नवाज मक्सी नादर अली मक्सी कुबो सईद खान खां एहसान अली भुट्टो गोठ जवान भुट्टो लगे नौंदर खां यासमीन मलिक मीरपुर खास खां जवाब नो दुरुस्त जवाब नो उनकी मेहरबानी सही जवाब दियण वाला दोस्त ने अल्ताफ गाडी बलोच कराची खां अमर रमेश लाल कृष्ण लाल मोहम्मद अमीन जफर सादिक शेख इसरार अबड़ो ममन खान कुंभार वफा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हालेपुर स्टाप मीरपुर खास खां रेहाना खान बखर खां बरकत अली जमाली बलोच जाफराबाद बलोचिस्तान खां जोहेब कटबर बिलाल कटबर जिनल अब्दीन उन सा गड है उनकी भेनर सीमा रुखसाना रहमतपुर लाड़काने खां हाफिज मुनीर खोसो लाड़काने खां याद कियो उनकी वड़ी मेहरबानी गोठ मोलड़ माशी लगे वडन मरन खां जमीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली जहीर अब्बास वफा हुसैन सोलंगी गोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई गोठ अहमद खान लाशारी धूणन खां नियाज अली लाशारी नंढड़ो शाहजेब लाशारी गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर शादाब चांडियो गोठ छुटो मक्सी लगे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नाराफ्ताब सखर लगे सब्जी मंडी खां एजाज अली जूणी जो मुनीब रहमान मुजीब रहमान जूणी जो यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काने खां फौजी इरशद अली मयसर एजार फकीर एजाज अली करोड़ो डॉक्टर रिजवान अली करोड़ो माजिद अली जतोई हरसा की घड़ी कोरकण खां सूमर फकीर कोरकणी तो समय आखिरी नगमो अमान दोस्तों नाम

गुलाब लाल जी इन खुश नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची पे पंहिंजे पुॼण ते हयाती बख़ैर अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगाह।

0: गुजर से जी खामोशी बाद अमेरिका ईरान जा एक बेते हमला अमेरिका जो ईरानी बेट लारक ते मिसाइल हमलो ईरान जो जवाब में उर्दन है यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते वार आबनाय हुर्मुज़ में अमेरिकी ड्रोन भी तबाह करण जी दावा अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाय हुर्मुज़ में बारूदी सिरंगू विछाइण वारी कोशिश रोकण लाइ यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाए वो है आबनाय हुर्मुज़ मथा उडाम कंदड़ अमेरिकी ड्रोन MQ-9 के भी किराए वो है
1: ईरानी बेट लार के तबाह करे छो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले की तस्दीक कहते है ते ईरानी बेट लार के तबाह किया है ईरानी सदर मसूद पेजान है ते खिते में बदमनी अदम इस्तेकाम कें भी मुफाद में ना है तेहरान जंग न तो चाहे पर जाहिरियत जो मुंह तोड़ जवाब दिनो वो
0: लखी गुलाम शाह जो पी कार इल्जाम हेठ धी ए नौजवान के कतल कर छो जवाबदार गिरफ्तार गोठ महमूद बाग में जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो बुशरा अल्ताफ सुमरे के कतल किया इतलाते पुलिस वाके वारे हंध पहुंची जवाबदार अब्दुल्ला के गिरफ्तार कर वरतो कार इल्जाम हेठ कतल थे जोड़े जा लाश अस्पताल मुंतकिल
1: मदे जी वेझो पुराने तकरार तां बिन धुरिन में जेड़ो फायरिंग एक नौजवान मार जी वयो गोठ जतन जे कड़ी में जमाली बिरादरी जे बिन धुरिन में पुराने तकरार तां जेड़ो थियो जेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में नौजवान अली हसन जमाली मौके ते मार जी वयो मक्तूल जे वारसन जो चवण आहे त रजब जमाली जे धुर नौजवान के कतल कयो आहे पुलिस जो चवण आहे त धुरिन में पुराने तकरार तां थियल जेड़े में नौजवान मार जी वयो आहे जांच करे रहिया आहिनि

0: नेपाल में तबाही मचाईंदड़ बोड के छह ॾींहं गुज़रण बावजूद गुम थियल 4,000 खां वधीक माण्हुनि जो अञा पतो न पियो। बोड सबबि फोत थींदड़नि जो अंग बि 900 खां वधी वियो। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि बोड दौरान गुम थींदड़नि में 200 स्कूली शागिर्द बि शामिल आहिनि। बोड सबबि गुम थियल परॾेहनि जी बि ॻोल्हा जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मोरू, नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। GAFM 88 नेटवर्क। छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
4: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
3: सखर शिकारपुर रोड ते,
4: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
4: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
3: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
3: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐं 600 गज।
4: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
3: साफ़ मिठो पाणी,
4: बिजली, गैस,
3: 24 कलाक सिक्योरिटी,
4: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: ॾाढो सुठो
5: GAFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सबसे पहले वक्त की बात करते हैं. तो जी वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का म्यारी वक्त है. तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे हम बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हावा सेफ सीजिए. बदल अदनगर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. मौजूद और तो कल खुदा खेलिए दे मतलब वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कल खुदा खैरियत.

आज सालगिरह है उनको कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों शहरों शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और बरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बुलिस्तार या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे जिंदगी गुलजार है. तो रिया में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

जी प्रज्ञा, मैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से, आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस में मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/3fm88k। पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर पाएंगे, तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113।

इसी के साथ हम प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा ज़्यादा दिन है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले. इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले.
2: अगर खूबसूरती खपे तो आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे. सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स, एक्ने और स्कार्स घटाए, स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और ये शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
4: तमाम पंजो खाबन जो घर हिक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जते हो जे तहफुस जदी सहूलतों ऐ मंजूर थेल सिक्योरिटी
5: तपोई भलीकार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
4: सखर शिकारपुर रोड ते
5: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
5: एक शानदार ऐ काबिल एतमाद रिहायशी मंसूबो.
4: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर.
5: रिहायशी प्लॉट्स 80 120 150
4: कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ और 600 गज़.
5: हिते तमा के मिलन थी जदीद सहूलतों.
4: साफ में तो पानी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक सिक्योरिटी,
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल. ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
4: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाए है त्री मौके बनाए थो.
5: अजी पेंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो.
4: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री.
5: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
5: and 03132757860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
4: Tawase mehfooz mustaqbal and behtareen investment jo behtareen intekhab.
6: Yaar macha kya kithe vanya ghar mein baitho hai ha par theek hi naya shayad mujhe zindagi laika dawai nahi thai
4: jo bhala chha chha to ke saaf saaf mutha maslo chhai
6: yaar.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: साथ साथ हम कॉल्स लेते हैं आप लोगों की 03000131388 के ऊपर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हाफिज लखमीर भाई, कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: बस कोई शायर की तो होगा, आप जो सुना रहे हैं
0: सुना दें फिर.

0: ये सिंगर क्या है और टाइटल क्या है गाने का?
1: ये सुमन हिरारी का सिंगर है और टाइटल है काले रंग दा होए या बुरे रंग दा होए।
0: सॉरी,
1: काले रंग दा होए।
0: आपकी आवाज भी डिस्टॉर्शन आ रही है।

0: करेंगे डाव।
1: आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, थोड़ा सा सही से बताएं प्लीज।
0: ये मतलब टाइटल है काले रंग का हो या भूरे रंग का हो, बस हो गए वफा वाला हाल में इश्क मलंग का।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमारे दोस्त से मतलब देने का।

0: अभी कंवल साहब सुन रहे हैं, फिर पावला मुरू साहब सुन रहे हैं, और मोहम्मद कासिम साहब और शमी जी साहब और जो भी सुन रहे हैं उनको सलाम। लेकिन ये गाना जो है प्ले जरूर करना, मेरे पहले वाला गाना भी।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: तो सुनो, हटो पीछे, भागो अहमद, हटो वहां से।
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
2: अच्छन वारन का परेशान आयो, पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर। पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो, वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी, हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्श क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आयो नओ रंग, नओ अंदाज ऐ नई ताजगी। अडी पंजे वेजे स्टोर ता आर्श क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजी खूबसूरती के दियो नओ रंग। आर्श क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: छा तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हां खे मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108161। 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फालिज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राबितो करियो 03 26 22 00 440।

0: वेलकम बैक। एंड आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुकना है आपको मेरे साथ पूरे पर एक मिनट का। नेक्स्ट कॉलर, हेलो
1: हेलो,
0: ओके जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: शहर गुलाब लेगा रिपोर्ट में शाम खा रहे हैं, शहर गाली खा रहे हैं।
0: ओके भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है, करम है भाजी। आप सुनाओ
0: जी। मैं बहुत अच्छी, मुझे बताएं गाना सुनाएंगे?
1: क्या गाना सुनाएंगे आपको?
0: आपकी आवाज जिम में डिस्टॉर्शन आ रहा है, कम आ रही आवाज,
1: बता रही है, नेटवर्क का मसला होगा।
0: ओके गाना सुना दे बस जल्दी से।
1: हाँ जी गाना सुनाता हूँ जी।
0: बिलती
1: वो मुश्किल जिस का परे तकाने राहिन उजागा करे, यरे न साथी चलायो फिरे अदाउन साना पहलायो फिरे। मिलनती वो मुश्किल जिस का परे
0: किसको डेडिकेट कर रहे हैं?
1: ये मेरा बेटा इरफान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखे। और भाई का गाना हम सर्च करते हैं, तब तक हम एक और कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबिलो बाजी रुखसारे।
0: कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं,
2: शुक्रा शुक्रा।
0: ओके जी गाना सुना दें।
2: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी,
0: सुना दें। ओके जी, भाई की कॉल ड्रॉप हो गई है, अब भाई ने ये बोलना है कि आपने की और ये मैंने नहीं की है, क्या किया जाए। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: अली मोहम्मद बात कर रहा हूँ।
0: अली मोहम्मद भाई, क्या हाल चाल?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गाना सुनाना है?
3: सुनाऊँ गाना?
0: बिल्कुल सुना दे अच्छा सा।
3: तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले।
0: ओके
3: नाई बस कर दी आवाज में।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद भाई। और कुछ?
3: राम दिल को सलाम, दुआएं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मौला आपको सलाम।
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी। और साथ साथ हम गाना प्ले करेंगे जी, और गाना मुझे मिल चुका है, आई गेस यही वाला है, सो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। और गाना हमारा हो रहा है प्ले, और जब भी हम ऐसा कुछ प्ले करने जाते हैं या करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी देर लग जाती है, लेकिन हो जाता है।

साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने कहके दिखाना है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये कहेंगे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना और बिना कंफ्यूजन कहना है. अगर बिना कंफ्यूज हुए कहेंगे तो अच्छे तरीके से टंग ट्विस्टर कह पाएंगे. तो इसको प्रैक्टिस करना अब आप शुरू करेंगे और हम चलेंगे एक और सॉन्ग की तरफ. और सॉन्ग के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. स्टे.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते वार आपने हरमुज में अमेरिकी ड्रोन भी तबाह करण जी दावा अमेरिकी सेंटकॉम चयो है त आपने हरमुज में बारूदी सुरंगू विछाण वारी कोशिश रोकण लाइ ईरानी लाकपेट ते हमलो कयो फासदार इनकलाब अमेरिकी हमले की तस्दीक कंदे चयो है त अमेरिकी हमले में केतरा ही फौजी शहीद थे हमले के जवाब में उर्दन ए यूएई में मौजूद अमेरिकी अड्डन के निशानो बनाया वो है आपने हरमुज मथा उड़ाम कंदड़ अमेरिकी ड्रोन MQ-9 के भी केरायो वो है
2: ईरानी बेट लार्क के तबाह कर छो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले की तस्दीक कंदे चयो है त ईरानी बेट लार्क के तबाह कयो वयो है ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो है त खिते में बदअमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिं बि मफ़ाद में नाहे तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटरो जवाब ॾिनो वेंदो
1: जंग अमेरिका के थकाए विधो अमेरिकी फौजी क्यादत ट्रंप इंतजामिया के खबरदार कर छो अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पैंजी एक रिपोर्ट में जानायो है त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई के ब्रेक डिनी वही है अमेरिकी फौज मजी जंग सलाहियत मुतासिर थी सके थी अमेरिकी फौजी क्यादत मूजिब ईरान से 6 महीनों का जारी जंग फौजी वसीलन ते वो बार बणजी चुकी है एक ही तकरार में फोर्सिस के मसरूफ रखने से अमेरिकी अस्करी सलाहियत के खतरा थी सकन था
2: सिंध असेंबलीअ जो आम इजलास अॼु थींदो नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट्स ते बहस लाइ पी पी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बहस कयो वेंदो
1: बलोचिस्तान में भारतीय फितने खिलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन ब दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियन मौजूद बलोचिस्तान जे इलाइक़े वाश्क में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतला ते फोर्सिस ऑपरेशन कयो जंहिं दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी विया दहशतगर्दनि पुलिस स्टेशन ऐं कस्टम हाउस ते हमले में मुलविस हुया

लकी गुलाम चावे जो पीउ कारे इल्ज़ाम हेठि धीअ ऐं नौजवान खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ महमूदाबाद में जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो बुशरा अल्ताफ़ सुमरे खे क़तल कयो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो खे गिरफ़्तार करे वरितो। कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल जोड़े जा लाश इस्पताल मुंतकिल।

कराची जे डिफेंस वारे इलाइके में औरतन जे झेड़े वारो मामलो सिंध हाई कोर्ट ताईं पहुची वियो। तशद्दुद जो शिकार औरत ऐं संदसि भाउ तशद्दुद कंदड़ औरत पारां दाख़िल करायल केस ख़तम कराइण लाइ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त दरख़्शां थाणे ते मरियम रज़ा जे मदद में दाख़िल FIR ग़लति कूड़ी ऐं गैर क़ानूनी आहे। केस ख़तम कयो वियो। DIG ॾखण में ॿिन्ही धुरियुनि खे अॼु पंहिंजे ऑफिस तलब कयो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: अपने नाम का नहीं बता। चले खैर कोई बात नहीं, तहमीना मुझे ये बताओ कि टंग ट्विस्टर बोलना है, सुना है टंग ट्विस्टर?
1: हाँ टंग ट्विस्टर यार बोलना नहीं है।
0: बोलना नहीं है, क्यों नहीं बोलना? ट्राई तो करें, ट्राई तो करें। सारे सुनने वाले कहेंगे तहमीना को तो आता ही नहीं है, तहमीना से तो होता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूंगी? हाँ
1: अच्छा
0: हाँ तो बोले ना। हेलो तहमीना, तहमीना किधर? हेलो ओके, तहमीना भाग गई। लेकिन बुरी बात है, भागना नहीं चाहिए। 0300011348 के ऊपर एक और कॉल है। हेलो
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कौन से?
2: वफा तारिक जमील जतोई करते से।
0: वफा तारिक जमील जतोई, आपकी आवाज को क्या हुआ था? शुरू में किसी और को कॉल दी थी या आपने ही निकाली थी आवाज?
2: जी जी मेरे से निकल गई थी।
0: आपसे निकल गई थी?
2: जी जी
0: माशाल्लाह, औरतों की आवाज निकाल लेते हैं।
2: नहीं नहीं भूल गए थे।
0: अच्छा भूल गए थे, भूल से निकल गई।
2: अल्लाह
0: अच्छा मुझे बताएं, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी जी सुनते हैं।
0: तो टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
2: नहीं ये नहीं आता,
0: ये नहीं आता। चले फिर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। 0300011348 इस सेगमेंट में वही कॉलर जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम सरदर्द, क्या हाल चाल?
3: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वो वाहिद कॉलर है जो हमेशा इसी सेगमेंट में कॉल करती है और इसी सेगमेंट के लिए आती है और हमेशा विन भी करके जाती है, है ना सरदर्द?
3: बिल्कुल
0: है ना। तो कितनी मतलब के अच्छी बच्ची है सरदर्द।
3: हाँ देख ली ना मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, फरमाबरदार।
0: चलो फिर इसी बात पे टंग ट्विस्टर बोल दो। स्टॉप, हमारे पास वो ऑप्शन आता है ना 2x पे लगा के सुनने और देखने का। मुझे लग रहा है सरदर तुम्हारी कोई 4 या 6 एक्स पे लगी हुई है और उस पे जो है ना तुम बोले जा रही हो, बोले जा रही हो, मतलब क्या स्पीड है, क्या बात है।
3: आपका सुन के तो मैंने बोलना सीखा है।
0: इतनी तेज तो मैं भी नहीं बोलती। तुम तो मुझसे भी आगे जा रही हो। चलो खैर अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ और कुछ कहना है?
3: अल्लाह
0: हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। 0300011348

0: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जीए सक्कर FM 88.
3: सक्कर की आवाज.
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले. इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
5: अगर खूबसूरती खपे तो आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे. सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स, एक्नी और स्कार्स घटाए, स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पहले बार कही थी तुम्हारे प्रोग्राम में, जिंदगी गुजार है।
1: चलिए जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे?
0: सुना तो है, बोल नहीं सकता।
1: बोल नहीं सकते? क्यों बोल नहीं सकते? बोलना नहीं आता आपको?
0: बोलना आता है भाजी।
1: तो फिर
0: बस ये टंग थोड़ा भारी है।
1: भारी है? भारी तो नहीं है, वजन तो है ही नहीं इसमें।
0: वजन है, तालो और चाबी है ना।
1: वाह, क्या क्या लॉजिक निकाला है आपने। वैसे और कुछ कहेंगे?
0: बस जो सुन रहे हैं उसमें सलाम, आपको सलाम, तुम्हारे टीम को सलाम। ओके, अल्लाह
1: हाफिज़। थैंक यू। गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और गाने के साथ साथ आगे मूव करेंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा, दवा में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। भागो अहमद, हटू वहां से। हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोए। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाए। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफातियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले। इसके हर दाने में तीनों اجزاء की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अच्छा अवा अच्छन वारन का परेशान आयो, पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर। पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो, वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी, हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्श क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आयो नौ रंग, नौ अंदाज ऐ नई ताजगी। अडे पंजे वेजे स्टोर ता आर्श क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजी खूबसूरती के जो रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
3: तो आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखलाओ जारी हैं। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA। खास लेतुं स्कॉलरशिप्स मौजूद। बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे ता DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 0310816611। 44 सालन जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़न जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालन जे वसी तजुर्बे सां हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राबितो करियो 03-26-22-00-440।
4: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सर शिप के लिए آج ہی رابطہ کریں. آگا جبار 03009312700.

वेलकम बैक एंड लास्ट में हम वापस आ चुके हैं और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लास्ट में बस बहुत कम वक्त बाकी है और जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे उन लोगों के कुछ मैसेजेस. गुड मॉर्निंग आरजे रुख साहब, मुझे सिंधी सॉन्ग सुनाओ आप, पिरी ओ पिरी. और हमारे साथ हैं जी अल्ताफ अली गढ़ी बलोच, कराची फ्रॉम से लिखा है इन्होंने, कराची फ्रॉम से. अच्छा, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि आप कराची से हैं. और इसके अलावा जी हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गाना प्ले कर दूँ एंड उसी गाने के साथ फिर हम प्रोग्राम को रैप भी करते हैं. एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटिफुल और इसको हम सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे लास्ट में. अच्छा, हमने मैसेज किया है गुलाम लाशारी गोट बाशम खान रिंग से, गाजी खान रिंग और मंथार रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद और छोटी कोहनैन जहरा बाजी. आपकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी है और शो सुन रहे हैं. इसके अलावा नेम गुल हसन नींदवानी इद्रीस और लिखा है कि जी बाजी सॉन्ग सुनाओ फाइजा अली का. डेडिकेशंस हैं जी खान आमिर खान मोहम्मद रिजवान को. ओके, और इसके अलावा जी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस. अल्ताफ अली गढ़ी बलोच हमारे साथ मौजूद है कराची से, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ फाइनली हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के दो विनर्स हैं जी, एक तो हैं एज ऑलवेज सरदर्द और उसके अलावा एस आर एच, ये दोनों आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के विनर्स हैं. तो इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

सिंध असेंबली जो अहम इजलास अज थींदो। नवनि सूबनि ऐं इंतकामी यूनिट्स ते बहस लाइ बीबी सिंध जे सदर निसार कोड़ो पारां पेश कयल रिट ते बहस कयो वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शगनाई सहकारी तंजीम जे सरबराह इजलास में शिरकत लाइ किर्गिस्तान रवानो। वज़ीर-ए-आज़म में किर्गिस्तान क़यादत सां बि मुलाक़ातूं कंदो। वज़ीर-ए-आज़म शगनाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब में तेज़ी सूरतहाल ते आगाह करण सां गॾु अमुन ऐं इस्तक़ाम वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरींदो। सिंध हुकूमत मलिर एजुकेशन सिटी में ॾेही ऐं परॾेही कंपनियुनि लाइ आई टी सिटी क़ाइम करण जी रिथाबंदी करे छॾी। 1070 एकड़ खां वधीक ज़मीन ते आई टी कंपनीज़ लाइ सनअतूं ऐं आबादियूं क़ाइम थींदियूं। ॾेही तोड़े परॾेही कंपनियुनि 700 खां 800 मिलियन डॉलर जी सीड़पकारी करण जो वाइदो बि करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी जे ज़ोन में डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइम कया वेंदा। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि लाइ ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजियुनि सां लाॻापियल सनअतुनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो। आई टी सिटी लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारो अमल बि जारी। मनसूबनि जी बाज़ाबता इफ़्तिताह जी तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो इम्कान। सिंध काबीना मलिर ज़िले में एजुकेशन सिटी खे वधीक 5,987 एकड़ सरकारी ज़मीन ॾियण जी गुजगो में मंज़ूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर आसिम हुसैन जी दरख़्वास्त ते मलिर ज़िले

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।

अलावा और बहुत ही खूबसूरत सी नात आपने यहाँ पर सुनी और उसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलते का नाम सिद्धराव के साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास लाने वाले हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम के लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर आज के प्रोग्राम में सवाल की बात की जाए तो आज मैं काफी दिनों के बाद जो है ना प्रोग्राम में आप लोगों से पहेली पूछने वाली हूँ और पहेली जो होगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है कि आपने मुझे बताना है, बिल्कुल जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सारे लोग मुझे बताएं कि आपको ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती या फिर नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल ये सवाल यही है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकती। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल्फी उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जैसे आप लाइक करेंगे शेयर कर देंगे, और अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पर। और जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम कहा जाता है। आपने क्या करना है, आपने बस टॉपिक को फॉलो करना है और बताना है कि आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा है। और अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी बता देंगे क्योंकि आपकी पसंद के गाने भी लगाए जाते हैं जी प्रोग्राम के अंदर। तो क्या सोच रहे हैं जल्दी से प्रोग्राम का ऐसा भी नहीं है, और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती। हाँ जी हाँ जी बताइए मुझे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाते हैं जनाब, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग GFM 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं सुनते के नाम वस्ते, सुनते रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक, तो साथ रहिए और साथ

0: 1:30 PM This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
0: सखर के हो
2: तो आवाज भी सखर की है सुनते रहो
3: तमाम भी पैंजू ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठहर चाहे था जिते हो जे तहफुज जदीद सहूलतों आई मंजूर चल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड थे
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थे
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 आई बसो गज जा
3: आई कारोबारी मौके कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज 600 गज
4: हिते तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
3: साफ में तो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भेजो है
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
3: Tawaan se mehfooz mustaqbal aye behtareen investment jo behtareen intekhab cha tawaan jo khwab aaye doctor of physical therapy nurse ya health professional ban jaan to koi

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथी और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नमस्ते। बिल्कुल जी, आपकी सदराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास लाते जाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर आप मुझे ज्वाइन करने वाले हैं तो आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप फेसबुक पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो फेसबुक वाली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। ओके जी, तो आज मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया कि आप बता रहे हैं मुझे वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकती। हाँ जी, दही और नहीं दोनों एक जैसा साउंड कर रहा।

आप मुझे बताएं जल्दी से सवाल का जवाब क्या हो सकता है. अगर आपको टॉपिक आ रहा है तो मैसेज कीजिए. अगर आप वैसे भी मैसेज करने वाले हैं तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें. कई मरतब ऐसा हो जाता है आप मैसेज तो कर देते लेकिन टॉपिक का दूर दूर तक कोई जो ना आता पता ही नहीं होता, तो टॉपिक फॉलो कर लिया करें अगर आप मैसेज कर ही रहे हैं तो. अदरवाइज अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वेलकम एंड खुशामदी. ओके जी, तो प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने भी लगाए जा रहे हैं और गानों से याद आया कि प्रोग्राम में जो है ना मैंने अच्छे अच्छे गाने सेट कर दिए हैं. फिलहाल तो अभी इस लिंक में आप मेरी पसंद के गाने सुनेंगे, बाकी जब हम दूसरे लिंक में आएंगे तो उसमें आप लोगों की पसंद के गाने चलाएंगे. ठीक हो गया. और यहाँ पर जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं बिल्कुल आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मैसेजेस की जान भी आ जाते हैं. और जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिला है वो मिला है हमें जी इरम का. और इरम क्या कहती है, आप ही अब मुझे भी बस आरजे बनना है. आरजे बन जाइए जी, आपको किसने रोका, वैसे आप बन जाए अच्छी बात है. आप बहुत ज्यादा बोलती हैं मुझे ये लगता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वही आरजे बनने के काबिल होते हैं. आप बन सकती हैं, वैसे आपने जो सैलरी के हिसाब से बात करी वो ऐसा कोई सही नहीं है. बस अगर आप ऐसा है कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए वाली सीन बन रहा है, तो बस उसी हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है. अदरवाइज जो टाइम से काफी टाइम से जैसे मुझे काफी टाइम हुआ है तो उनके लिए अच्छा खासा है. बाकी अगर नए से जो लोग शुरू करेंगे तो 10-15 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती. और उसके अलावा चाचा खालिद हमें सुन रहे कहते हैं अजनबी सॉन्ग जी रुकेस्ट आई एज यूजुअल. बिल्कुल चाची जो गानों हलाई नासी. चाचा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सिद्धू कैसी हैं आप, बेटा माय हेल्थ इज नॉट वेल, प्रे फॉर माय गुड हेल्थ. बिल्कुल जी आपके लिए दुआ करेंगे, आप जल्दी से ठीक ठाक हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए. और ये हमारे साथ हैं जी कश्मीर से जुबेदा बलोच, हमारी प्यारी भाभी. हाय सिद्धू नाइस यो प्ले प्यार कबू दिल खोले बाय ममताज मोलाई. ओके ओके, ममताज मोलाई सुनाते हैं आपको. और हमारे साथ है सिकंदर अली मातली से. ओके जी, सिकंदर अली हमें सुन रहे हैं मातली से, तो सिकंदर अली को हम वेलकम कहते हैं. उनका अलावा मजहर अली हमारे साथ है. मजहर अली टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपने जो टॉपिक का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है. यदि आप ही प्लीज प्ले ओएसटी, अच्छा चलें बिल्कुल ये ओएसटी आपको सुनाएंगे और आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा. कश्मीर से अखलाक भाई हमारे साथ है. नाइस शो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, क्या बात है. और चाचा खालिद कहते हैं बेटा टॉपिक आंसर हाँ हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब. और मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा होशियार होते जा रहे हैं, सारे लोगों को बोल रही हूँ. जो भी सवाल पूछो बस आपको जवाब पता होता है, अच्छी बात है वैसे ये. और हमारे साथ हैं गुल हसन. गुल हसन अच्छा यो शायद अगते तव्हां पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखियो आहे, मूंखे हिन खे सही तरह सां पढ़ण न पियो अचे, या अलाए शायद तव्हांजे ॻोठ जो नालो, माज़रत कयूं था. अब्दुल रहमान कलोड़ो से शो सुन रहे हैं. ओके और अच्छा आपने गाना लिखा है, प्लीज बाजी फायजा अली का सॉन्ग सुनाना. फरमाइश है मेरे बेटे आजाद खान और आमिर खान मोहम्मद रिजवान की. ओके जी ओके, सब प्यारे लिसनर्स को वेलकम कहा जाता है, जितने भी प्यारे पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं. और ये हमारे साथ इरम कहती है यार आपकी भी नहीं नहीं आप थोड़ा को ज्यादा ही जा रही है, इतना ज्यादा नहीं है, मैंने पहले ही बताया ना होने से कहते होना बेहतर है वाला सीन है. और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है. चले भाई इतने सारे मैसेजेस एक साथ ही तो नहीं पढ़ूंगी ना, ऐसा करते हैं यहाँ पर एक अदद आप लोगों के लिए गाना लगा लेते हैं. गाना सुनेंगे जी, और गाना हम सुनने वाले हैं ये वाला शानी अरशद की आवाज में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना. तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं. आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, देखते हैं कहाँ तक चलती है. आप कहाँ तक साथ देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है.

नाउ बाद में बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया, इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है, हम वो गाना भी एंजॉय करेंगे। ये हदीका कियानी जी की आवाज में गाना होने वाला है, इतना प्यारा गाना है ना, क्या बात है, सुनेंगे तो आपको खुद ही बड़ी चस्क आ जाएगी। तो गाना सुनिए और साथ साथ आप हमें जरा टॉपिक का जवाब बताते जाइए, आपको क्या लगता है वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकता।

क्या बात है, हदीका ख्यानी जी के गानों की ना मतलब एक अलग ही बात होती है। जो भी गाना आप प्ले करें, जो भी गाना आप सुने, तो ऐसा लगता है ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा था जो हमने पहले सुना था, क्योंकि जितने भी गाने हैं ना ये इतने मजे के होते हैं, ये बस क्या ही बात है। और इंजॉय करें आप, और साथ साथ आप बिल्कुल जी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है जरा आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं जो कुछ टॉक्सिक टाइप से होते हैं, यानी कि जिनका काम सिर्फ ये होता है कि हमारी जिंदगी में जहर घोलना होता है बस, उनको और किसी भी चीज से मतलब और मकसद नहीं होता, बस ये होता है कि वो आपकी जिंदगी में जहर घोले। और वो तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह से ये काम किया जाए, किस तरह से किया जाए। और जब उनको और कुछ नहीं मिलता और कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाते, तो वो उनका अगला जो वार होता है वो दूसरों की नजर में आपकी इज्जत खराब करना होता है, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि जब वो आपकी इज्जत खराब करेंगे, लोगों के सामने आपको जो है ना वो रुसवा कर देंगे, तब जाकर उनको जो ना थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन ये बात कई मर्तबा लोग भूल जाते हैं, अगर आप किसी के एक आंसू का भी रीजन बनते हैं, सबब बनते हैं, तो आपको उसकी कितनी लंबी चौड़ी जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर इसके बारे में अंदाजा हो जाए तो लोग इतना बचकर चले ना इस जमाने में, इस दुनिया में, कि भाई ये सोच है हमारे। लेकिन लोगों को भाई ये होता है कि भाई आज अच्छा लग रहा है, चस आ रही है, अगले इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हैं। लेकिन जब इस चीज का उन्हें एहसास होता है, जब रियलाइज होती है ये तमाम चीजें, तब वक्त भी काफी आगे निकल चुका होता है, चीजें भी हाथ से बहुत ज्यादा गायब हो चुकी होती हैं। और जब एहसास होता है इंसान को, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश किया करिए, अगर आप इन चीजों में, इन ऐसे कामों में हैं जो कि आपको रियलाइज नहीं होता, अभी आप गुनाह कर रहे होते हैं लेकिन आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो अभी भी वक्त है जनाब, क्योंकि जब आप उस टाइम में आ जाते हैं जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास ये होता है कि भाई पछता रहे हैं लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप अभी से जो है वो चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लें, और लोगों का ख्याल रखें, और हर किसी की इज्जत का ऐसे एहतराम करें जैसे मानो वो आपकी अपनी इज्जत हो। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि सारे अली बगा की आवाज में होने वाला है, और इनके साथ एक खातून है, उनका नाम पता नहीं क्या है, तो हम ये प्यारा सा गाना इंजॉय करेंगे। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए 881 पर, और फेसबुक पर जितने लोग मौजूद हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, पता चले आप हमारे साथ हैं।

की जी क्या बात है, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब हमारे सामने आ जाती हैं, जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भाई जान लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। बिल्कुल जी, लोगों की सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो अच्छी बातें जो जैसा होता है वो अगले इंसान के लिए भी बिल्कुल वैसा ही गुमान और सोच रखता है। तो इस बारे में जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कम सोचा करें, अच्छी बात होती है। जितना कम सोचेंगे उतना पुरसकून रहेंगे। और यहाँ पर ये प्यारा गाना एंजॉय कीजिए। गाने के फौरन बाद हम जरा जाने वाले हैं न्यूज ब्रेक की जानिब, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। वापस आकर आपकी पसंद के गाने सुनते हैं, आप क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, यही मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी का नाम मस्ती, सुनते रहिए और साथ दीजिए।

0: सिंधी संभलीअ जो आम इजलास कुझु देरि में शुरू थियण वारो नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट ते बहस लाइ पी पी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बहस कयो वेंदो। रिथ ख़िलाफ़ वकील बि सिंध संभलीअ ॿाहिरां पहुची विया। पुलिस संभलीअ ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रोड ब्लॉक करे छॾिया।
1: करप्शन थींदी त नए सूबे जी बि ॻाल्हि थींदी आहे। माण्हू जा मसला हल न थी रहिया आहिनि। सभु इख़्तियार हिकु फर्द वटि आहिनि। मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त सूबनि जे क़याम वारे मामले ते बहस वारी रिथ पीपल्स पार्टी आंदी आहे। बहस थियणु घुर्जे, कंहिंखे सुठो लॻे या न लॻे, पर ॻाल्हि थी रही आहे। भुट्टे जे आइन में ई सूबनि जे क़याम बाबति ज़िक्र थियल आहे। अवाम खे मज़बूत करणो पवंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान रवानो। वज़ीर आज़म शिंघाई सहकार कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदो। खिते जे सूरत हाल ते आगाह करण सां गॾु अमन ऐं इस्तेहकाम वारनि कोशिशुनि ते ज़ोर भरींदो। वज़ीर आज़म बेशक में किर्गिस्तान क़यादत सां बि मुलाक़ात कंदो।
1: पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबुल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म साक़दार दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर इस्तंबुल पहुतल। इजलास में सऊदी अरब ऐं तुर्किया जा परॾेही ऐं दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक थींदा। फील्ड मार्शल ऐं तुर्किया जे सरकारी दौरे दौरान अहम मुलाक़ातूं बि कंदो।
0: कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमेरिका जो ईरानी बेट क्लार्क ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं यूएईअ में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते वार। आबनै ओरम्स में अमेरिकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनै ओरम्स में बारूदी सिंगूं विछाइण वारनि कोशिशुनि रोकण लाइ ईरानी लार्क बेट ते हमिलो कयो। पासदारनि इनकलाब अमेरिकी हमलनि जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमेरिकी हमलनि में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं यूएई मौजूदु अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो। आबनै ओरम्स मथां उॾाम कंदड़ अमेरिकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे।
1: ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त खिते में बदमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिंजे बि मुफ़ाद में न आहे। तेहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो वेंदो।
0: ईरान जंग अमेरिका खे थकाए विधो। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत ट्रंप इंतिज़ामिया खे ख़बरदार करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट पंहिंजे रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई खे डिघी ॾिनी वई आहे। अमेरिकी फ़ौज जी मजमूई जंगी सलाहियत मुतासिर थी सघे थी। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत मूजिबि ईरान सां 6 महीननि खां जारी जंग फ़ौजी वसीलनि ते वॾो बार बणिजी चुकी आहे। हिकु ई तकरार में फोर्सिस खे मसरूफ़ रहण सां अमेरिकी अस्करी सलाहियत खे ख़तरा थी सघनि था।
1: सिंध हुकूमत मलीर जे एजुकेशन सिटी में ॾेही ऐं परॾेही कंपनियुनि लाइ ICT क़ाइमु करण जी रिथाबंदी करे छॾी। 1,070 एकड़ खां वधीक ज़मीन ते ITI कंपनीज़ लाइ सनतूं ऐं आबादियूं क़ाइमु थींदियूं। ॾेही तोणे परॾेही कंपनियुनि 700 खां 800 मिलियन डॉलर जी सीरपकारी करण जो वाइदो करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन में डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइमु कया विया। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ऐं ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल सनतनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल आहिनि। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो आहे। ITI सिटी लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारे अमल बि जारी आहे। मनसूबनि जे बाज़ाबता इफ़्तिताह जे तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो इम्कान।
0: सिंध काबीना मलीर ज़िले में एजुकेशन सिटीअ खे 5,987 एकड़ सरकारी ज़मीन ॾियण जी गुजगुअ में मंज़ूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर आसिम हुसैन जी दरख़्वास्त ते मलीर ज़िले जी ड्रे कोठेड़ो में 4,000 एकड़ ज़मीन ॾिनी वई। दे वांडो में 925 एकड़, दे जोड़जो में 500 एकड़, दे आबदार में 562 एकड़ सरकारी ज़मीन एजुकेशन सिटी लाइ ॾिनी वई। 5,987 एकड़ ज़मीन जी मालियत 150 अरब 43 करोड़ रुपया आहे, जेका फिलहाल सिंध हुकूमत जो नाणो खातो भरींदो।
2: Caltex Haveline Passenger Car Motor Oil Khareed ke Jeeto Guaranteed McDonald's Voucher aur Pao Mauka Grand Prize Jeetne ka Motorcycle Oil Khareedne par bhi Caltex Haveline de raha hai dheero exciting prizes jeetne ka mauka Caltex Haveline se sab jeetenge
1: Committee Chairman chayo hai tehdiyun tajweezun dein chahiyun tha jaisa adan sanan ke roke sakje
0: بلوچستان میں بھارتی فتنے خلاف فورسز جو آپریشن دہشت گرد مارج ویا سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان کے علاقے واش میں دہشت گردن کی موجودگی بارے اطلاع فورسز آپریشن کیا جن دوران دہشت گرد مارج ویا مارج ویل دہشت گرد پولیس اسٹیشن کسٹم ہاؤس سے حملے میں ملوث ہوا
1: نو صوبن سے بحث لائے سندھ اسمبلی میں رت پیش کرنے خلاف لاڑکانے دادو میں وکیلن پارا عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ کو بھی وکیل عدالت میں پیش نہ تھو وکیل اگواڑن چوائے تے سندھ خلاف سازش قبول نہ ہے سندھ جی جاگیر آفیس سے چھیڑ چھاڑ قبول نہ ہوندی

0: कुमार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासीर जनाना बीमार समेत ॿिनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 0333-7143-311
1: ज़मींदार भाइरन खे सिंध पेस्टिसाइड तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम जीअं त हर साल वांगुरु हिन साल बि सिंध पेस्टिसाइड आबादगार भाइरन लाइ ज़रई माहिरनि जी निगरानी में ख़िदमत में पेश करे थो कमंद जे फसल लाइ तमामु घटि ख़र्च में जदीद टेक्नोलॉजी जा नवां भाण ऐं ज़िंक जेके कमंद जी फी ज़रिए बि पैदावार वधाए सघनि थियूं हिन खां अलावा एस ईसा रॉडल्स ऐं रावी कंपनीअ जूं फुटिन जे जीत जी दवा सारनि लाइ ज़िंक कंदघा जी दवा ऐं ज़हर कमंद लाइ इम्पोर्टेड पोटाश 25 किलो में ऐं पोटाश 20 लीटर झरियूं पिण मौजूद आहिनि भाइरो इन महांगाई जे दौर में बन बर डीलर खां बचो सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी ते अचो प्रोप्राइटर श्याम लाल प्रतीक कुमार पन वाकिल राबते जे लाइ 03047814029 एड्रेस सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी नज़्द हबीब बैंक पन वाकिल GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: जीए सखर FM 88
1: सखर की आवाज बड़ी जाए क्योंकि काफी सारे जमा हो चुके हैं. उसके बाद जो है ना आप लोगों की तरफ जो है ना आपकी पसंद के गाने भी फेंकूंगी. तो पहले कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं.

एडी से कर लगी मेलो गानो आहे अॼुकल्ह ही गानो मूंखे वणे थो. ओके सो गानो एंजॉय कयूं पिया. हुन खां अलावा हमारे साथ इरम कहती है मेरी दिलबर दोस्त, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ ना ही मैं टॉक्सिक बनूंगी कभी, और मुझे टॉक्सिक लोगों से इतनी बेजारी होती है कि बस क्या बताऊं तुम्हें. वैसे टॉक्सिक आप क्यों बनेंगे, नहीं बनना चाहिए. टॉक्सिक लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तो बस आप अच्छी इंसान बने ये बहुत जरूरी होगा. और उसके अलावा टॉक्सिक लोग किसी को भी पसंद नहीं आते. और गोट हाची गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए कहते अवाज जो आवाज मिठो आ गानो लिखियो आ शायद तव्हां. सो मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलायूं. और ये मौजूदी वालेकुम अस्सलाम वालेले सलाम अदद फहीम शेख अदा छा हला सफा छा का हां सफा छा का कलम सब कुछ आया. तव्हां ॿुधायो कहते गानो ॿुधायो. गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायूं था, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया. और कहते दादा नींद आ गई आज इसलिए लेट हो गया, और कल आपने कैसे मना लिया कि मैं शो सुने और SMS ना करूं. हाँ वही मैं सोच रही थी, आज आपने थोड़ी लेट करी तो मुझे लगा कि भाई वो आपने बाजरा सीरियसली ले ली. चले आपकी मोहब्बतें होती है कि आप नाराज नहीं होते. वैसे भाई बहनों से नाराज ना ही हो तो बेहतर होता है. भाईरा जी कहते ना भेनर की प्यारा हूं, मुझे लगा ना भेनर भी थोड़ी थोड़ी भावन के प्यारी होंगे ज्यादा.

मूंखे सुठी ॻाल्हि आहे. इन खां अलावा हीउ वारो ट्रेक आहे जेको असांजे लिस्ट में आहे, ॾिसूं त कहिड़ो गानो आहे. ओके जी, शमन मिराली जी आवाज़ में ॾाढो वीआईपी गानो, हिन गाने खे बि इंजॉय कंदासीं. उन्हनि भाउनि खे डेडिकेट जिन शमन जे गाने जी फरमाइश कई हुई. और ये हमारे साथ ही मीरपुर खास से अब्दुल्ला माहिर, वालेकुम असलाम. बाजी, शो आपका बड़ा जबरदस्त जा रहा है और टॉपिक आंसर आपने दिया है बिल्कुल दुरुस्त. क्या बात है, बहुत बढ़िया. और आशिक अली मल्हा हमारे साथ है फ्रॉम पक्कड़ अबड़ो. सलाम जी, वालेकुम असलाम. डेडिकेट नज़ाकत अली अबड़ो, तारिक अली अबड़ो, गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो जी नाले. ओके, तव्हांखे चवंदा भली करे आया तव्हांजो मोहबतू आहिनि प्रोग्राम ॿुधो.

ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां इंजॉय कंदा गानो ॿुधो न गाने खां बाद में शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं तव्हां कॾहिं वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं वठंदमि सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जीएफएम 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास. GAFM 88 की आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. तमाम पैंजो ख्वाबन जो घर एक अड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
2: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट्स 80-120-150 गज जा
2: आई कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ 600 गज़
4: हित तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतों
2: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
2: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
2: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन्ही लाइ बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजी पेंजी प्लॉट जी

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चेंज थी वेंदो आहे या सही ॻाल्हि आहे. ऐं हीउ वारो ट्रैक असांजे लिस्ट में आहे जेके ट्रैक मतिलबु पेंडिंग हुया उन्हनि खे बि असां हलाईंदा वेंदासीं गॾो गॾु. तव्हां इंजॉय कंदा. हीउ मुमताज़ मलिक जी आवाज़ में गानो आहे जेनी फरमाइश असांखे असांजी भाभी करे छॾी हुई. भाभी त मूंखां विसरी वञे पई. भाभी गानो इंजॉय कजो ऐं प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे. बिल्कुलु जी मैसेज तरफ़ अचां.

अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, हमें तो पता नहीं था. चलिए, कितनी अच्छी बात है क्योंकि हमें अभी मालूम पड़ गई. उसके अलावा यहाँ पर भाई आपके कुछ मैसेजेस हैं तो उनकी जाने भी आ जाते. और ये चाचा खालिद कहते हैं, बेटा सिडो लास्ट सेरी लिंक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, खैर से जी जी इंशाल्लाह कहते हैं. बेटा सॉन्ग की रिक्वेस्ट मेरी भी पेंडिंग है अभी तक. हाँ हाँ बिल्कुल, चलाएंगे आपकी पसंद का गाना भी, थोड़ा सब्र कीजिए जरा. और ये मौजूद है हमारे साथ, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. ओके जी अल्ताफ अली गादी बलोच, आपको वेलकम कहा जाता है. आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है जो कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. और आश्रित अली मल्हा हमारे साथ है फ्रॉम बक्कड़ अबरो से, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, डेडिकेट नाजिक अली अबरो और तारिक अली अबरो, गुलाम मुस्तफा अबरो जी नाले. ओके ओके, तवा के चौथा भली करी आया. और ये

मुझे क्या बात है। और एक और गाना हमारे पास है जी, ये ओएसटी है, ओएसटी की फरमाइश हमें पता नहीं किसने कर दी थी, तो ये वाला गाना भी हम साथ साथ एंजॉय करने वाले हैं। और ये हमारे साथ हैं जी मकसूद, बता लेते हैं कि घर वाले कहते हैं तुम बिंदु बदल चले जाओ, मैं क्यों वहाँ जाऊँ, क्या होता है वहाँ पर, आप उन्हीं से पूछ लेंगे वो आपको क्यों कहते हैं ऐसा, इतना बेजार किया है आपने घर वालों को। आए, मत करे।

स्माइल्स ओएसटी। और यहाँ पर फहीम भाई लिखते हैं कि कल मैंने मजाक की थी, मैं आपसे नाराज कभी नहीं हो सकता, बहुत शुक्रिया। कहते हैं क्या दादा आप नहीं, बस सिर्फ एक मर्तबा गए थे, बाकी मुझे ऐसी शोर वाली और ये बहुत सारे लोगों वाली जगह पसंद नहीं आती। तो बस घर पे मंगाओ, खाना खाओ, चिल मारो, सीरीज देखो और बस एंजॉय करते रहो, ये वाली लाइफ अच्छी है ज्यादा। और उसके अलावा मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा कहती है वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। और आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि बिल्कुल सही है।

से आज आप देर से आए हैं ना प्रोग्राम में, तभी आपको नहीं सुनने को मिला, बाकी बहुत शुक्रिया। वैसे इजाजत लें आप लोगों से, क्योंकि ये गाना ऐसा है कि इस गाने को बस सुना जाए, तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से। वरीन चला तासा जी का मुझे मुलाकात थी पई ओ हा पंचपची वाले प्रोग्राम में थी, सो ज्वाइन कला आई पांजो ओ हिडो सारो ख्याल रखला इते का गलती थी, मुझे तो माजरत कयो था, जिनो फीडबैक रे जी वेवा जिना गाना रे जी वेवा सबनी का माजरत कयो था। सो मकलानी नाही बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू।

सिंध असेंबली जो आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो नवन सूबन ऐं इंतज़ामी यूनिट्स ते बहस लाइ पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बहस कयो वेंदो। रिथ ख़िलाफ़ वकील बि सिंध असेंबलीअ ॿाहिरां पहुची विया। पुलिस असेंबलीअ ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रोड बंदि करे छॾिया। करप्शन थींदी त नए सूबे जी बि ॻाल्हि थींदी। आम माण्हूअ जा मसाला हल न थी रहिया आहिनि। सभु इख़्तियार हिकु फर्द वटि आहिनि। मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदीअ चयो आहे त सूबनि जे क़याम वारे मामले ते बहस रिथ पीपल्स पार्टी आंदी आहे। बहस थियणु घुरिजे, कंहिंखे सुठो लॻे या न लॻे, ॻाल्हि थी रही आहे। भुटे जे आइन में ई सूबनि जे क़याम बाबति ज़िक्र थियल आहे। आवाम खे मज़बूत करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुची वियो। वज़ीर आज़म जो किर्गिस्तान अख़्तियारनि आदर भाव कयो। शाहबाज़ शरीफ़ किर्गिस्तान में शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदो। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान क़यादत ऐं ॿियनि मुल्कनि जे वफ़द सां बि मिलंदो। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबुल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्तंबुल पहुतल। इजलास में शिरकत लाइ सऊदी दिफ़ा वारो वज़ीर बि पहुची वियो। टि मुल्की इजलास में मका दिफ़ाई मुआदे ते अॻभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। मका दिफ़ाई मुआदे ते इजलास खां पहिरियों पाकिस्तानी वफ़द जूं तुर्किया जी क़यादत सां मुलाक़ातूं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम जी तुर्किया जे दिफ़ा वारे वज़ीर सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं। बेतरफ़न लाॻापन समेत दिफ़ाई सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही मुल्कनि जी क़यादत जो दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़।

ट्रेन के भी गिराए वे आए। ईरानी बेट लार्क के तबाह कर छो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से हमले की तस्दीक कदे है। ईरानी बेट लार्क के तबाह किया। ईरानी सदर मसूद पज़िशान है। खिते में बदअमनी अदम इस्तेहकाम कें मफाद में ना है। तहरान जंग न तो चाहे पर जारियत जो मोटरोल जवाब दिनो वो। ईरान जंग अमेरिका के थकाए विधो। अमेरिकी फौजी क्यादत ट्रंप इंतजामिया के खबरदार कर छो। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट जरिए रिपोर्ट में जाना है। ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई के ब्रेक दिनी वही है। अमेरिकी फौज की मजमू जंग सलाहियत मुतासर थी है। अमेरिकी फौजी क्यादत मूजिब ईरान से छह महीन का जारी जंग फौजी वसील से वो बार बन चुकी है। एक ही तकरार में फोर्सिस के मसरूफ रहने से अमरीकी अस्करी सलाहियत के खतरा थी सकता है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मेरे साथ मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब फिर वही बहार की कमी बस किस्मत हमारे ही हाथ में है उस पे इख्तियार की है कमी बस वो लोग भी गुजर गए वो घर भी जल चुके वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे जख्म तो भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है पर वक्त पे रहे मैं दोस्त वो कब किसी के लिए रुका है झुके ना सर फैले ना हाथ हमारे अब बस यही दुआ है कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है सबर से सबक जो मिले हैं सबर से अब मेरी सुलह है कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन, कहा सुना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत चुगदाई, कैसे किस्मत खुलाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad, the mansion mad, the mirror instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, villainously, dekho meticulously. Lost my medicinal se, love kiya maine kalam se. Sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke. Karte kab se, baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone. Dil ke tashreef apni off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

अकेले ही जलते रहे, भले शाम दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अभी रात पे यकीन मेरा, अजाए मुझे ये असीम करे, हकीम है कल

0: नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध संभलियो जो आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो। नवन सूबन ऐं इंतज़ामी यूनिट्स ते बहस लाइ पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बहस कयो वेंदो। पुलिस ऐं संभलीअ ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रोड बंदि करे छॾिया। सूबन बाबति सिंध संभलीअ में पेश कयल रिथ ते आवाम जे सख़्तु रद अमल बाद वॾे वज़ीर वटि आम इजलास। पीपल्स पार्टी सिंध जे पार्लियामेंट पार्टी इजलास 1.5 कलाक खां जारी। ज़रियनि मूजिबि पीपल्स पार्टी पारां ऐवान ऐं पेश कयल रिथ खे क़रारदाद में तब्दील करण ते ग़ौर। नवनि सूबनि बाबति रिथ सिंध असेंबलीअ में पेश करण ते MKM पीपल्स पार्टीअ जी थोराइती। पीपल्स पार्टी जे रिथ खे आइन मूजिबि क़रार ॾेई छॾियो। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदीअ चयो आहे त आम माण्हूअ जा मसइला हल न थी रहिया आहिनि, सभु इख़्तियार हिकु फर्द वटि आहिनि। मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। MKM जे डिप्टी पार्लियामेंटी लीडर ता अहमद चयो आहे त नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति बहस खे MKM पंहिंजी सियासी कामयाबी सम्झे थी। अॼु पीपल्स पार्टी पाण नवनि सूबनि ते बहस कराए रही आहे। MKM जे ॻाल्हियुनि खे संजीदा न वरितो वञे। सूबनि बाबति रिथ आणण जो मक़सदु अवाम खे सूबनि जे हामियुनि जा चेहरा ॾेखारण आहे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त असेंबलीअ जे फ्लोर ते पहिरें बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदी रहियूं आहिनि। सिंध असेंबलीअ जे स्पीकर चयो आहे त सिंध जे अवाम जे हक़ में जेको हूंदो उहो ई फ़ैसिलो थींदो। सूबाई वज़ीर सरदार शाह चयो जेको स्पीकर चयो आहे जेको बहितरु हूंदो उहो ई थींदो। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति इस्तंबुल में पहिरियों इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ़, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई वारो वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक मका दिफ़ाई मुआदनि ते अॻुभराईअ जो जाइज़ो वरितो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुची वियो। वज़ीर आज़म जो किर्गिस्तान अख़्तियारनि आदर भाग कयो। शहबाज शरीफ़ किर्गिस्तान में सरकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदो। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान क़यादत ऐं ॿियनि मुल्कनि जे वफ़दनि सां बि मुलाक़ात कंदो। कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमरीका ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमरीका जो ईरानी ॿेट लारक ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। आबनाए उर्स में अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाए उर्स में बारूदी सिंगूं विछाइण वारी कोशिशूं रोकण लाइ ईरानी लारक ॿेट ते हमिलो कयो। पासदारनि इनकलाब अमरीकी हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमरीकी हमले में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए उर्स मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे। ईरानी ॿेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी ॿेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पिज़िकशान चयो आहे त खिते में बदअमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिं बि मफ़ाद में न आहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटरोल जवाब ॾिनो वेंदो।
1: बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 50 इस मिनिस्ट्रियों का फौज जफर मौज आप बनाएंगे, आप कान से पकड़ के एक को उतारेंगे, एक को लगाएंगे, एक को बिठाएंगे। आपको पता है, आपको मालूम है कि आज बुरादरी शाह ताकतवर है, उसको ना कोई उठा सकता है, ना उसको कोई अपनी जुबान बुलवा सकता है। वो अपने सिंध के लिए, सिंध धरती के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है। जनाब ये चंद गुजारिश थे। देखो, हम कभी नफरत की बात न सियासत में करते, हम यहां एक मुत्तहद सिंध की बात करते हैं, जिसमें तमाम इकाइयां, तमाम लोग, तमाम जबान बोलने वाले, तमाम मजहब के लोग प्यार से, मोहब्बत से, अमन से इस धरती को तरक्की दें। क्योंकि सिंध सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिंध के अपने एहसासात हैं, सिंध के अपने जज्बा, हर सिंधी के अपने जज्बात है। आज देखो आप, चलो जरा करके दिखाओ तमाशा, फिर क्या होगा। और लोग बात करते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईन में लिखा था। आईन एक मुस्तनद दस्तावेज है जिसको हमेशा के लिए बनाया गया। उसमें हाँ एक बात रखी गई कि अगर कभी किसी वजह से, ऐसा नहीं कि बिला वजह कोई अपना शौक पूरा करने के लिए करे, किसी वजह से सूबों के उसको सरहदों को अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके लिए आईन में मौजूद, आईन में क्या मौजूद है, चलो ये भी तो बताओ। आईन क्या कहता है? आईन कहता है कि उस सूबे का असेंबली 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करे, फिर वो सही है। वो बात तो सामने आ गई है। मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि इस असेंबली से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दफा 6 दफा ये कर्रदाद मंजूर हो चुकी है और अब और भी होगी। और जब तक इस पे बात होगी तो हम करारदादे मंजूर करते रहेंगे और सिंध की तकसीम को हम कतन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी दलील, किसी भी जवाब के साथ सिंध की तकसीम हमको कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे उम्मीद है कि इस बहस को, बहस होगी जरूर, और ये अच्छा किया आपने, ये क़यादत ने अच्छा फैसला किया, ये निसार साहब ने अच्छा फैसला किया कि हम दलील के साथ बात करें। ये नहीं कि सिर्फ जनाब ये तरक्की नहीं हुई थी इसलिए हम इसको कर रहे हैं। भाई आपके पास कौन सी दलील है सिवाय नफरत की दलील की, सिवाय लसानी बुनियादों पर सिंध को तकसीम करने की दलील है आपके पास? एक ख्वाम अखवा के आपके पास जवाब है कि सिंध ने तरक्की नहीं की है, अब हम तरक्की देंगे। तो पहले कहां थे आप लोगों ने भी इस मुल्क में, इस सिंध में कितने तजुर्बात किए हैं 1 यूनिट से लेके आज तक? कभी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो कभी पिलाना गवर्नमेंट तो कभी वो गवर्नमेंट तो कभी क्या, कुछ नहीं हुआ यहां। मैं समझता हूं अब आवाम को फैसला करने दिया जाए, अब आवाम के मैंडेट से ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये सिंध भी तरक्की करेगा और हम सब खुशहाली के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ इस सिंध धरती को अपनी मां समझकर, अपना इज्जत समझकर इसके गोद में बैठेंगे, पलेंगे, फूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भुट्टो।
1: शारिक जमाल साहब, जी एजाज साहब, आप अगर शारिक साहब ने, जी

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाबे स्पीकर। जनाबे स्पीकर, आज जिस तहरीकी इल्तवा पे बात करने का मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सीनियर सियासतदान निसार खोड़ो साहब का कि आज इस असेंबली में इस बात पे जो डिस्कशन का हम सबको मौका दिया, सिंध की खुशहाली के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए। स्पीकर साहब, आज इस असेंबली में एक बात तो मैं वादे करता चलूं कि अल्लाह पाक ने आज से 79 साल पहले जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो मैं बिल्कुल अलर ऐलान कहता हूं कि मेरी धरती मां मेरा पाकिस्तान है। मेरी धरती मां मेरा पाकिस्तान है जो मेरा मुल्क है। जब पाकिस्तान वजूद में आया मेरी धरती मां के लिए उसको बेहतर निजाम के तौर पे चलाने के लिए उसमें रहने वाले तमाम कौमियतों के लिए उसको 4 सूबों में डिवाइड किया। मेरी धरती मां को बेहतरीन निजाम देने के लिए 4 सूबों में उसको डिवाइड किया गया कि एक अच्छा निजाम चले, एक अच्छा बेहतर हुक्मरानी हो जिसको सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में। फिर उससे बात सूबों की अगर बात आती है, हम सिंध में रहने वाले शहरी हैं तो फिर सिंध को बेहतर चलाने के लिए जिसको आज मेरे दोस्त धरती मां बोलते हैं, मेरी मां पाकिस्तान का जिगर गोशा है सिंध, जिगर गोशा है सिंध मेरी मां पाकिस्तान का, फिर उसको बेहतर चलाने के लिए इस सिंध को शहरों में डिवाइड किया गया। सिंध शहरों में डिवाइड हुआ, शहरों के नाम रखे गए। मैं आ रहा हूं अपनी बात पे, सबर कर लो। फिर इसके बाद इस सिंध में डिवीजन बने इस सिंध में डिवीजन बने। फिर इसके बाद इस सिंध में डिस्ट्रिक्ट बना। फिर इन डिस्ट्रिक्ट को सर बात सुने तो मेरे भाई मुझे सिर्फ इतना बताएं जब इस सिंध में शहर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं बन सकते इंतजामी यूनिट? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है। 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए सिंध की आवाम। मेरा सिंधी भाई, सर एक मिनट ना बात तो करने दे। जब सिंध की आवाम आवाज उठाती है तो बोलते हैं कि सिंध हमारी धरती माँ है। सर इसी इसी इसी सिंध में करारदाद इसी असेंबली में क्यों नहीं लाई गई? जब इसी सिंध की रोडों पे, याद होगा आपको जब मोहतरमा शहीद हुई थी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया था।
1: क्या बोल रहे हैं आप?
0: पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था।
1: आप
0: सर आज इसी सिंध की
1: असेंबली फ्लोर पे खड़े होके कम से कम स्पीच तो सही तरह कर लें।
0: मैं कर रहा हूँ ना, आप करने तो दे। पार्टी ने
1: भाई गलत बात ना करे ना, गलत बात ना।
0: पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया,
1: नाम लेके कोट कर रहे हैं किसी की बात, वो भी गलत, ये गलत ना करें।
0: अच्छा ठीक है, सही कर रहा हूँ ना सर।
1: हाँ करेक्ट करें,
0: ना इंसान है ना,
1: करेक्ट करें दोबारा।
0: उन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे का
1: जी।
0: सर आज इसी सिंध की धरती में खड़े होके कुछ लोग पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते, क्यों करारदाद आज तक नहीं लेके आए? आप लोग सिंधु द्वेष के नारे लगाते, क्यों करारदाद नहीं लेके आए? सर अभी वजीर आला साहब ने कहा कि भाई ये जलसे जुलूसों में बात करने से इंतजामी यूनिट नहीं बनेंगे, ये चैनलों पे बैठ के बात करने से भाई हमने तो बात की नहीं है यार। एमक्यूएम ने कहा बात की, एमक्यूएम ने तो तायद की है। जिसने बात की है उसके अब जिक्र भी आप लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, करें ना उनका जिक्र। जिन्होंने बात की है उनका जिक्र करें, इस मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करें, क्यों नहीं करते, करें ना उनका जिक्र। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने बात करी है भाई पर जलते हैं। हमने तो तायद की है बेहतर निजाम के लिए, क्यों निकली सूबे की बात, क्यों निकली इंतजामी यूनिट की बात। जब आइन में तरमीम करने की हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 140A में तरमीम करो, शहरों को मेयरों को इख्तियार दो, तो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम ये तरमीम नहीं करेंगे। ओ भाई हर चीज में बदमाशी, सूबा बदमाशी से चलाना है या अच्छी हुक्मरानी से चलाना है। दो ढाई हजार चार हजार लोगों को जो है बी टीम बना के रखा हुआ है,
1: शारिक साहब
0: लेके आ जाते
1: हैं। शारिक
0: साहब बात करने देंगे सर,
1: एक मिनट में आपको जी एक्सपंच करता हूँ ये सारे अल्फाज। और प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस अर्जेंट मोशन पे बात करें और तारीख जो आप ये बयान कर रहे हैं, हिस्ट्री को जो कोट कर रहे हैं, जरा सही करें। असेंबली सेशन में खड़े हैं आप, ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रही।
0: बदमाशी वाला
1: ये गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें।
0: एक्सपंच हो गया ना सर,
1: ये एक्सपंच हो गया। व्हाट डज इट मीन कि आप बोलते रहेंगे और मैं एक्सपंच करता रहूं?
0: आप नहीं करेंगे ना। पहला हुआ है सर, कौन सा तीसरा हुआ है? पहला हुआ है, पहला तो वैसे ही, पहला ई चलान भी माफ है। तो सर कहने का मकसद ये है कि सूबे को बेहतर हुक्मरानी से चलाना है। मैं आज अपने सिंध के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस ऐवान में, इस सिंध असेंबली से पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई थी, पाकिस्तान जो है इस असेंबली ने बनाया। आज मैं इंशाल्लाह बल्ले उधर तादाद 118 की हो या बल्ले तादाद 37 की हो, मगर इंशाल्लाह ये 37 लोग पाकिस्तान को बचाएंगे, इस सिंध को बचाएंगे, इस सिंध में रहने वालों को बचाएंगे। मैं सिंधी भाइयों को अपने बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हें अच्छा सिंध चाहिए, बेहतर हुक्मरानी।
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

जी जना वेलकम भलीकार खुश आमदीद सिंधड़ी जी शाम आई अवां के एक दफो बेहर मोहब्बतन भरियो सलाम आर जे यूनिस बकारी जो। जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो भाइरो जी FM 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम स्टूडियोज मां अवां साण सिक मोहब्बत पंजाए पजो गसन ते विख विख ते गडूंदासी ठीक 7 वगे ताई प्यारे पंजाए पजे रंगन में ही नौ रंग शामिल थी चुको है ऐ असि कोशिश कंदासी ते में ताजा मैसेजेस शामिल कयूं ऐ जेको सेकंड आवर हुंदो उन में ताजो कॉल्स भी शामिल कंदासी त मैसेज करण जो तरीके कार इहो है त अॼु जेकर तव्हां मैसेज हाणे हाणे ॿुधो पिया मूंखे तव्हां सखर में आयो या तव्हां मीरपुर खास में लाड़काणे में आयो या मातली में तव्हां सकरंड में मटियारी में मेहरापुर में या मोरे में जिते जिते भुजो हुजो हशाश ऐं बशाश खुश ऐं बाश शालावा जी मुर्क मेरी न थिए ऐं हा मैसेज मोकिलण चाहियो था त टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾियो ऐं उन खां पोइ पंहिंजो नालो लिखो पंहिंजे ॻोठ पंहिंजे शहर जो नालो लिखो सेंड कयो मैसेज हाणे ई सेंड करियो 888 यानी 888 जो नंबर आहे पर शुरूआती जेको कोड हूंदो आहे जॾहिं तव्हां पेड मैसेज ते वेंदो मैसेज लिखण टाइप शुरू कंदो त उते तव्हांखे MTI मातली जो शॉर्ट अखर हूंदो MTI उहो लिखंदो त पोइ असांजे सॼे नेटवर्क जा तमामु जेके मैसेजिस आहिनि उहे असां वटि स्क्रीन ते शो कंदा ऐं असीं अवां जा मैसेज कंदासीं शामिल। जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क के ध्यान सा गौर सा प्यार सा ही पंजाब सा बुधण लाए अवां जो थोरो थर जी वारी खमड़ो अगस्त जो आख़िरी ॾिहाड़ो ऐं सेप्टेंबर ॾांहुं वधंदड़ विख यानी लम्हा ब लम्हा असां मोहबतुनि में अवसरण हूंदासीं वखातिब अवां जूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं अवां जा मैसेजिस बि शामिल कंदासीं पर साज़ ऐं आवाज़ साथ में तॾहिं मज़ो ईंदो जॾहिं अवां बि थी वेंदव बिल्कुलु शामिल त पोइ बसि तव्हां बिना देर जे मैसेज टाइप करे वठो ताकी तव्हां सां ॻाल्हियूं थियनि ज़बरदस्त ऐं तव्हां सां थियनि दिलि जूं ॻाल्हियूं ऐं ॻाल्हियुनि में हूंदियूं उहे ॻाल्हियूं बि शामिल जेके तव्हां लिखी मोकिलींदा।

होगी जिन पहरियों ट्रैक वटी वठंदा ना नडो ब्रेक वटी वठंदा उनके पोए जी वने मैसेजेस शामिल कंदा सी केयर से शामिल हुंदो केयर संग सुठो बवाद मोकलिंदो केयर सुठो गालियों कंदो उ अमा ते ता छडियो फिलहाल अमा के वरी तरीके कर बुधायो टाइप कजो MTI स्पेस पंजे गोठ शहर जो नालो लिखी पंजे नालो लिखजो 8881 दे मैसेज हाने ही मोकले छरियो बदीन खां बखर सीराणी खां सखर किंजर खां कारोंजर केटी बंदर खां कश्मोर तई गूंजंदड़ सजी सिंध जो हिकड़ो ही आवाज जी हां सिंधड़ी जी शाम GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे लिसनर्स ये नाम।

जना वेलकम भलीकार खुश आमदीद अवां शुभ दोपहर सिंध डी जी शाम ऐं सिंध डी जी शाम में जिते जिते बि अवां असांखे ज्वाइन कयो तव्हां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज मां ऑन एयर थींदड़ आवाज़ प्यार जा पखेड़ा उॾार करे जिन जिन इलाइक़नि में कनायो पियो वञे सभिनी जूं महिरबानी सभिनी जा वॾा वड़ ऐं हा अवां जेकॾहिं शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 ते मैसेज मोकिले सघो था सो जनाब 8881 असांजो नंबर आहे उन ते मोकिलियो मैसेज ऐं उन खां पोइ ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु शामिल थींदो त पोइ दोस्तो महिरबानी क़दरदानो अवांजे मैसेजनि जो ओसियड़ो मिलंदो पियो गॾु गॾु असीं मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल्हि इन करे कयूं पिया त जीअं असां कोशिश कयूं तव्हांजा कुझु मैसेज अची वञनि त उहे बि असां शामिल करे वठूं अवां वटि मौसम कीअं आहे अवां वटि हींअर कहिड़े क़िस्म जो माहौल जुड़ियल आहे इहो बि तव्हां खां कॉल्स ते पुछंदासीं पर पुछंदासीं थोरी देरि खां पोइ यानी 6 वॻे खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में तव्हां जूं कॉलूं वठंदासीं हिन महिल असां मैसेज शामिल करणु चाहियूं था ॾिसंदासीं त केरु महिरबानी जेको लिखंदो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो थो लिखे ऐं 888 ते मैसेज ॾियारे थो मोकिले त पोइ फ़िलहालु पाण वठूं था हिकिड़ो ब्रेक एंड ट्रैक

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

कयूं अवां जूं पिया कयूं ऐं अवां जे ॻाल्हियुनि में असीं कोशिशि कयूं पिया तव्हांजा मैसेजिस बि शामिल कंदासीं। पर जीअं मूं पहिरीं चयो त मौसम ॾाढी शानदार आहे, काफ़ी इलाइक़नि में जेका मौसम आहे उहो थधी मौसम आहे ऐं सिज जेको आहे उहो घटि निकिरी रहियो आहे, पर जिते जिते थोरो घणो सिज निकिरे पियो इहो बि असांजे लाइ सही आहे। इन करे त सारियाल जी मौसम आहे, अवां ॼाणो था त सारियूं जेके आहिनि उहे उतर जे इलाइक़नि लाड़ या विचोले जे इलाइक़नि में हिन महिल काफ़ी अहिड़ा इलाइक़नि जिते पर काफ़ी अहिड़ा इलाइक़नि जिते पाणी जी खोट सभु देरि सां सारियूं वेहरियूं वयूं आहिनि, जिते हाणे सारियूं जेको आहिनि उहो अन ॾियण यानी चांवर ठहिण जे प्रोसेस में आहे। जेकर सिज घणो न निकितो त उते नुक़सान थींदो साहिड़ियुनि खे, इहो ज़रा ई माहिर चवनि था। सो दुआ कयो त मौसम पंहिंजे वक़्त सां हुजे भली, पर जॾहिं असांजी ज़रात कामयाबु हूंदी ऐं असांजो ज़मीनदार असांजो हारी बहितर हूंदो त ॾहीं बहितर थी सघंदो। अलाह करे त असांजी सुवारी सिंधी आहे, समूरा ख़ूबसूरत हुजनि।

ओढ़ाजी हुजूर बख्श रिंद खां असें ज्वाइन कर चुका है। शादी खान रिंद साहब ए दीन मोहम्मद रिंद अवानी मेहरबानी लख तौर अयाज रिंद नंढड़ो हुसैन रिंद थैंक यू भलीकार चवंदासीं अवांखे अवांजूं मोहब्बतूं जो अवां असांखे ॿुधो पिया ऐं अवां असांखे मैसेज मोकिलियो। ईअं ई बिल्कुलु मौज़ूद सामाइन तव्हां बि असांखे लिखी सघंदा MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो 888-881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक वरी बि वठंदासीं। शाम जो पहर आहे, ख़ूबसूरत मंज़र आहे, आसपास में तव्हां माहौल ॾाढो सुठो ठहियल हूंदो। हुन माहौल ऐं मंज़र खे साम्हूं ॾिसंदे असां बरकत अली जो ही आवाज़ अव्हांजे लाइ पेश पिया कयूं। अचो त गॾिजी ॿुधूं शाम जो ही पहर नाव असांजे कयूं।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: मोहब्बतूं जिन जिन मेहरबानी असांखे ज्वाइन कयो आहे, अवां हिकु वक्त ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो, GFM मीरपुर खास, GFM मेहरापुर, GFM मटियारी, GFM सकरंड, GFM मोरो, GFM सखर, GFM लाड़काणो ऐं GFM मातली जो आवाज। सो जनाब कुछ मैसेजेस इन शामिल करे वठूं, असा के किशन मल परमार बुधन पे आवाज तमाम घणी मेहरबानी भलीकार चवंदासी। किशन मल अवां के आई शहबाज मल्ला साहब अस के ज्वाइन कयो, शहबाज ताजुब तमाम घणी मेहरबानी भलीकार चवंदासी तवां के, तवां ससा गदगद शामिल आयो आई असा जो साथी रेडियो जी दुनिया जो बेहतरीन आवाज आई उनसा गदगद गर बेहतरीन लेखक सीनियर ब्रॉडकास्टर मीर मुर्क वाडू साहब असन गद असा उनन के वेलकम चवंदासी भली कार। सो वज़ समीन प्यारे पंजाबी रंगन ते जड़े गीत हुंदा आहिनि त अदल सुमरे साहब के ॾिनो खूब फरमायो, जंहिं बि राह मथां तुंहिंजा पेर पवन, जंहिं बि राह मथां तुंहिंजा पेर पवन, मुंहिंजा गीत हुजनि विखरियल उन्हनि वाटनि ते। अवांजे वाटनि ते हिकिड़ो खूबसूरत गीत विछाईंदासीं, ॿुधंदासीं हिन ज़बरदस्त ट्रैक खे, एंजॉय कजो, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक खां पहिरीं।

ही आहे GFM88 रेडियो नेटवर्क ऐं अमा ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम ऐं सिंधड़ी जी शाम में यकीनन अॼु असां वसण वखाते आहियूं तव्हांजो आरजे वञे पंहिंजो यूनुस बकारी ऐं असां वखाते पिया आहियूं जिते बि हुजे ख़ुशि जो आबाद हुजो अञा कुझु मैसेजिस वधीक अची चुका आहिनि शामिल कयूं ॻोठ हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली खां असांखे झंडो मरी खां ज्वाइन कयो आहे कुर्बान अली ख़ासकेली मिठा माण्हू तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजो अवां असांखे यादि कयो मैसेज कयो महिरबानी कुर्बान ख़ासकेली वेलकम ऐं भलीका जीवन सामीन जीअं त तव्हांखे चयो त पहिरीं कलाक जे ब्रेक खां पोइ असां ॿिए कलाक में जॾहिं वेंदासीं त तव्हां ॻाल्हियूं कबियूं फिल वक़्तु छाकाणि घटि टाइम आहे ऐं न्यूज़ ब्रेक जेकॾहिं असां वटि हूंदो त न्यूज़ ब्रेक वठंदासीं छाकाणि इहो न्यूज़ ब्रेक लाज़मी हूंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं महिल असांजी काफ़ी लिस्ट न्यूज़ ब्रेक जो इशू हूंदो आहे नेटवर्किंग जो इशू थी सघे थो पर न्यूज़ जो को बि इशू न हूंदो इनशाला न्यूज़ हूंदी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं गॾो गॾु असां वांखे वठी हलंदासीं साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में जिते हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक तव्हांजे लाइ कॉल करे वठंदो त पोइ गॾिजी ॿुधी था वठूं मिठड़ो आवाज़ ऐं शमन मीरा अली जो अचत कची वठो

0: Sunte.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सर एकड़ी तारीखी हैसियत आए सिंध जदे अंग्रेज सरकार के दौर में जदे बम्बई था मर्ज थे तो तहकड़ी तारीखी जदोजहद हले थी वह तारीखी जदोजहद दरअसल पाकिस्तान जो बुनियाद विजे थी उन तारीखी जदोजहद में जेके भी किरदार हैं जेके भी किरदार हैं उन्हें में जेके तमा दिसंदो तो जिते सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जो रोल है उते सर शाहनवाज भुट्टे जो रोल तमाम घणो अहम रहो है सिंध के बम्बे का अलग करण में जैसे उन्हें मीटिंग्स का वो बुनियाद है जेते बाद में हली करे पाकिस्तान जो बुनियाद पवे तो 1935-1936 में सिंध बम्बे का धार थे तो 1940 में जेका रेजोल्यूशन अचे थी जेका लाहौर रेजोल्यूशन करारदार थे पाकिस्तान अचे थी उन्हें में भी हिस्ट्री बुधाई हुई अलग किए करे बुधाए पर उते या गाल चिट्टी तरीके से बुधाई वही तो जेका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आए सूबन जी वह बरकरार रहंदी सूबा इन्हें ही शर्तुन ते पाकिस्तान में शामिल थिया गाल तारीख जदे अगते वधे थी 1943 में वह सिंध जी लेजिस्लेटिव असेंबली जैजा मेंबर पेरियों भेरो सिंध पाकिस्तान के लिए वह रेजोल्यूशन पास कन था तो सिंध के पाकिस्तान जो हिस्सो कयो वने उन वक्त जी सूरतहाल छावी जेकडे सिंध में या रेजोल्यूशन आई पे तो जेकडे पाकिस्तान जे बीन हिस्सन जी तवा उन वक्त जी हिस्ट्री पढ़ंदो तो पंजाब में यूनियनिस्ट जी गवर्नमेंट हुई मतलब तो उहे छिड़ विछड़ हुआ कि हिकड़े गाल ते कायम न हुआ जेकडे तवा फ्रंटियर में दिसंदो तो कांग्रेस जी हुकूमत हुई जेकडे बंगाल हुयो तो उन जो अलग मौकूफ हो लेकिन सिंध जे अवाम जो पंजे असेंबली में निमांडा मोकलिया उन्होंने पाकिस्तान में शामिल थियण जी गाल कई वो इन बुनियाद ते पाकिस्तान वजूद में आयो पाकिस्तान वजूद इंदे ही साजिशन मुंह खोलियो मुं अज तफसील में पढ़ो पे तो जेका 1948 में जेका फरवरी में जेका रेजोल्यूशन आई जे रेजोल्यूशन में जेका रेजोल्यूशन कराची के वफाक जे हवाले करण जे खिलाफ रेजोल्यूशन हुई उन रेजोल्यूशन में तमाम घणी गालियों कई हुई असाजे हैदराबाद के मेंबर वह रेजोल्यूशन मूव कई उन तकरीरू थी अकलियती मेंबर भी तकरीरू क्यों बीन मेंबर भी तकरीरू क्यों उन्होंने असो कड़ो कसूर है तुम छो कराची के वी वन चाहे था छो कराची के इकोनॉमिकली सिंध के कमजोर करना चाहे था सियासी तरीके से कमजोर करना चाहे था बाद में उते या गाल थी हुई ऑन द फ्लोर या गाल थी हुई 1948 में जडे सिंध के कराची के पाकिस्तान का सिंध का धार करण की गाल थी तदे के मेंबर या गाल कई तो दरअसल मुखे लगे तो ये को वड़ी साजिश जो एकड़ो हिस्सो आए उन वक्त तो वे गाल हलियों 1955 ताई 1955 में जेको अलमियो जेको सिंध सा जेको पाकिस्तान सा दरअसल थियो जैमें सूबन जी जेका इंटीग्रिटी हुई सूबन जे नाले के उन्हें जी शनाख्त के खत्म कयो वियो पर यो असाजे हिन तरफ जे मेंबरन के जेके जेके मीडिया में वही करे ये गालियों कन था जेके जलसन में ये गालियों कयो था सकन खोले बुदन ही 1955 जो दौर ना है ही के उन पीरजादा चीफ मिनिस्टर जो दौर ना है जैमें 70 मेंबरन सिंध में या पाकिस्तान में वन यूनिट के खिलाफ तेरी री तौर पर लिखी दिनों पर उन वजीर आला जी गवर्नमेंट के हटाए करे उते एक वो वजीर आला आंदो वे जे सिंध के वन यूनिट जे हवाले कयो यो हाने हते आर्टिकल 239 में लिखल है पर आऊं चाहतो उन आर्टिकल 239 जो जेका गूंज आए वो सिंध जे गली कूचे में आए सिंध जे गोठन में आए सिंध जे शहरन में आए सिंध जे अवाम में आए बचो बचो चवे तो सिंध जो अवाम इन तरीके की कें भी साजिश के कामयाब थियण न दींदो असां सिंधी हमेशा फख्र महसूस कयो आए असा जो सिंध सा जेका मोहब्बत आए असा के सिंध जी तारीख सा मोहब्बत आए असांखे सिंध जी ॿोलीअ सां मोहबत आहे, असांखे सिंध जे कल्चर सां मोहबत आहे, असांखे सिंध में वहंदड़ उन सिंधु दरिया सां मोहबत आहे जंहिंजो पाणी पी असांजे पेट में आहे ऐं असां उन सिंधु दरिया जो पाणी पी हिन फ्लोर ते हिन अवाम जे साम्हूं हिन सॼे मीडिया जे साम्हूं हिते वेठंदड़ सभिनी मेंबरनि जे साम्हूं इहो आहद कयूं था, इहो वचन कयूं था त इनशाला ताला असां सिंध जे हक़नि जे लाइ सिंध जे लाइ हमेशह ॻाल्हि कंदा रहंदासीं। ऐं 1955 में ठलो जेकॾहिं 1955 में वञणु चाहियो सोच छा आहे त सिंध खे ऐं ॿियनि सूबनि खे मर्ज करे हिकिड़ो सूबो कयो ठाहियो वञे जंहिंखे ॿिए सूबे सां कंपेरेटिवली बराबरि कयो वञे ऐं शायदि सिंध जी शिनाख़्त उन्हनि 15 सालनि में उन्हनि जेको किताबनि में शायदि गुम हुजे, किताबनि में दिलियुनि में न, दिमाग़नि में न, ज़हननि में न, किताबनि में गुम हुजे, पर उन्हनि 15 सालनि में सिंध रिवायती तौर ते जेका मुज़ाहिमती जदोजहद हुई, जेका मुज़ाहिमती जदोजहद बंबई सां सिंध जे गॾजण खां पोइ थी, जेका मुज़ाहिमती जदोजहद जॾहिं ब्रिटिश राज हुयो, जॾहिं इंडियन जेके अकुपाइड इंडियन जेके गवर्नमेंट जॾहिं हुई तॾहिं मुज़ाहिमती जदोजहद हुई, उन 15 सालनि में तव्हां ॾिठो त उहा मुज़ाहिमती जदोजहद शायरीअ जे रूप में साम्हूं आई, उहा मुज़ाहिमती जदोजहद हारी जदोजहद जे रूप में साम्हूं आई, उहा मज़ाहिमती जदोजहद तव्हांखे लिखणियुनि में साम्हूं आई, उहा मज़ाहिमती जदोजहद तव्हां ॾिसंदो त सियासत में जेका उहा जदोजहद साम्हूं आई ऐं तव्हां ॾिसो पिया अॼु बि जेकॾहिं असां ॾिसूं था त हुन सॼे वायुमंडल में जिते कॾहिं किथां खां कॾहिं किथां खां इहा ॻाल्हि का ठली ईअं ई नथी अचे, चुर्च ते अचे थी, जॾहिं उहा ॻाल्हि ईअं ई उछाली वञे थी तॾहिं असांजा भाइर उन ॻाल्हि में शामिल थियण जी कोशिश कनि था, पर अलहमदुल्ला अॼु बि जेकॾहिं ॻाल्हाइनि था त बग़ैर दलील जे ॻाल्हाइनि था, अॼु बि जेकॾहिं ॻाल्हाइनि था त पंहिंजो पाण जे नमूने सां ॻाल्हाइनि पिया, पंहिंजो पाण खे मुतमन नथा करे सघनि, पंहिंजो पाण में मुतमन न हूंदे असांखे हू का ॻाल्हि सम्झाइणु चाहिनि था, टुटल लफ़्ज़नि में सम्झाइणु चाहिनि था, हुननि जी ॻाल्हि जो दम निकिरी चुको आहे, हुननि मां हवा निकिरी चुकी आहे, सिर्फ़ हू पंहिंजनि उन्हनि जेके आकाउनि खे ख़ुशि करण जे लाइ हू ॻाल्हि उछलायल ॻाल्हि खे कंधे ॾियण जी कोशिश कनि था, क्रेडिट एतिरो ई खणनि था, पर असल में मोरली जेकॾहिं ॾिसूं, इख़लाक़ी तरीक़े सां ॾिसूं त हिन फॉर्म 47 ते आयल मेंबरनि खे इन ॻाल्हि करण जो हिते हक़ बि नथो पहुचे, वेठा आहिनि कनि, यकीनी तौर ते ॿुधूं था, ॿुधणो पवंदो, पर हक़ीक़त ई आहे मोरली तौर ते, ऐं जेके रेज़ोल्यूशन्स आयूं हुयूं बार बार आयूं आहिनि, जेके मूं साल ॿुधाया 12 में आई 14 19 में 2026 फरवरी हिन साल जेका रेज़ोल्यूशन आई जेका वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब जेका पेश कई, उहा रेज़ोल्यूशन जेके पहिरीं रेज़ोल्यूशन आई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी जनाब डॉक्टर मोहम्मद कुंभार साहब असंगे ज्वाइन कयो आहे, डॉक्टर शम्स असंगे ज्वाइन कयो आहे, आई दानिश बकारी साहब असंगे ज्वाइन कयो ता जो आपदा परवेन बुधरायो लख थोरा ता जा बिल्कुल बुधराइंदासी छोकन बुधराइंदासी आई तवानी मेहरबानी तवा सके बुधो पे असि अवां जा शुक्रगुजार आयो। कॉल ते असा सा कर केर हुंदो उन जे ला पेरी सा कॉल वठने की कोशिश कयो ता रिसुना कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। केर साहब है किथा का?
1: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालका सालेपट का इरफान अली थे बो।
0: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालको सालेपट यानी जिलो सखर है ना?
1: जी हाँ जिलो सखर।
0: इरफान अली समूह साहब के इरफान अली समूह नालो बुधायो छा बुधायो?
1: जी
0: थे इरफान अली थे बो। अच्छा जी वेलकम चंदा जी ताकि काफी जमानो थियो है याद करण खां बविया अज याद कयो तमा ताजी मेहरबानी
1: तमा अच्छो था खबर ही कांती पे प्रोग्राम कयो था ले कई कोन था टाइम मटा छ दे बस के बुधाई को
0: ने ने ने ने ने मुझे प्रोग्राम हाने न्यू जो शेड्यूल है नई सेम आई जका अज लास्ट डे आ सुमाणी का जका 10 महीने जे नई सेम आई है उन में हाने अची हो सुमर अंगारे जे दी शाम जे 5 बजे का 7 बजे तई सो इंशाल्लाह गड़ हुंदा
1: ओए नफ्तर में आया आयो तव प्रोग्राम
0: जी जी जी बिल्कुल कदे की हुंदो ना ई हुंदो त कदे कदे मा ईदो या कदे कदे वरी कोनेड़ा बार स्कूल कोन वेदा इन स्कूल में गुसाईदा इन उन के छा चेबो
1: जी
0: जे को स्कूल में बार न वने ओच तो भजी वने रिसेस में उन के छा चोंदा इन
1: हां जिकनी के बार रिसेस में भजी ना इन के वरी ईदा ही ना इन स्कूल बिल्कुल भी ना
0: उन के गोसड़ो शागिर्द चोबो है ना
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: ही है। तो ये कदे कदे गुस्साए वेंदो आया वाकई ये तवानी शिकायत जायज है हाने कोशिश कबी त कोन गुस्साईदा जी बस
1: इंशाल्लाह तां भी कोशिश करना दे तां जो शेड्यूल दिनो है इन मुताबिक तवा दे कॉल कयो आई मुखे अज भी नजीर मंगरे कॉल करे बुधाए तो तां जो
0: हां नजीर साहब जी बिल्कुल कॉल आई भी अवां सके भी केर पे बुधे मुने जे नाला खणन चाहियो त बिल्कुल इंशाल्लाह गड हुंदासीं न असां नेटवर्क हिस्सो आहियूं नेटवर्क असांजे असांजी हिकड़ी फैमिली आहे जीएफएम 88 फैमिली जो हिस्सो आहियूं असांखे जंहिंखे जेॾी महिल जिते जिते हिस्सो पती मिलंदो वो उते शामिल थींदो त जेको हाणे मुंहिंजो शेड्यूल आहे नेटवर्क जो इंशाल्लाह हर सूमर ऐं अंगारे जे ॾींहुं शाम जो 5-7 वॻे ताईं
1: बिल्कुल ऐं मां काफ़ी तव्हांखे ॻोल्हियो लेकिन अलहमदिल्ला मां त उन चैनल ते तव्हांजो आवाज़ ॿुधी सोचींदो यार यूनिट काॾे वियो आहे हिते
0: न न बाबा जी एफ एम सां गॾु ज़िंदगी आहे ज़िंदगी हिते ई गुज़ारींदासीं जंहिं रेडियो नेटवर्क सां गॾु हलबो जंहिं सां रहबो उन सां निभाइबो अच्छा जी कॉल ड्रॉप थी वही है ये थी दो ना करे करे कॉल ड्रॉप थी वही है तो दुख तो थी दो दिसूं था हाने केर है कॉल थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाई केड़ो हाल है खुश आयो
0: शुक्र है केर साहब है किथा का
2: वो तो बाबू वेरो थरपारकर का गलाए तो दिलीप कुमार नेगवा
0: हां थरपारकर जी की मौसम भला
2: मौसम ये समय से लगे खादी हवा लगे
0: आए है वाह वाह। अच्छा भला ये बरसात थोरणी ही पी पर कुछ फोटड़ो थियो है सावक थी
2: न बरसात असा जाम जाम बरसात पी पर मसलो ये वे वो गाँव में को मजो निकी फसल में मजो को माल भी ये बुख थी
0: आए है अला साई रहम फरमाई दो दुआगू आयो अ गड भी केर पे बुधे
2: जी रोस्तम अली पवार रामचंद कुमार कोलिया मलक मोहम्मद बलोच मोहम्मद ताले लगारी बुधन सभी के सलाम मुझे भान जा नाला वो नवल राय दानिश कुमार सूरज गुल शंकर लाल मेघवाल बाबू
0: मेहरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां ज़िलो नौशहरो फ़िरोज़ कंडियारे खां मेहर अली कलोड़ा साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे भलीकार हा बस कुझु ॾींहं मोकल ते हलियो वियोसि हाणे हाज़ुर आहियां बाबा हाणे कोन घुसाईंदसि
1: ईअं त न कयो भेण
0: बाबा कोन थींदो न बसि सोरी बाबा सोरी
1: अच्छा ॿियो कहिड़ा
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे जल्दी जल्दी नाला खणी वठो मूंखे ब्रेक वठिणो आहे
1: जी मुंहिंजो भाउ आहे मां अमीन कलोड़ो पियो निसार कलोड़ो ॿियो जेके बि ॿाहिरि भेनियूं ॿुधाईंदा सभिनी खे हिन जो मुमताज़ लाचारी जो गानो ॿुधाए तुंहिंजी कावर में अकुर्ब करे थो प्यार लाइ छा
0: इनशाला इनशाला महिरबानी मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा।

0: छा हाल चांडिया साहब, खुश आयो? ठीक आयो, चंगा भला मतारा जोड़ 12 बजा टंगड़े में आवाज अच्छे पे हो? आवाज अच्छे पे भाई जान? शायद आवाज कट जी हुई है। बी काल ते केरा, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब है किथा का? केड़ा हाल है लखा डिना जुनेजा साहब? शुक्र अलहमदुलिल्लाह साईं जा एहसान आहिनि, तव्हांजूं दुआऊं आहिनि, बिल्कुलु ठीक ठाक आहियां। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे?

0: शो सुठो आहे। महिरबानी भेण, तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, वेलकम था चऊं तव्हांखे। ओके जनाब, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं बाबा, चांडिया थो ॻाल्हायां, मिस्टर जबल खां।
0: जी जी, चांडिया साहब महिरबानी, तव्हां पहिरीं बि शायदि कॉल कई हुई हा न? अच्छा, तव्हां हाणे पिया कयो। तव्हां जल्दी जल्दी सां ॿियो, तव्हांजा अगरि केरु नाला ॿुधाए वेठो, छो त मुंहिंजे मोकिलाइण जो टाइम थी वियो
1: आहे।
0: बसि बसि ठीकु आहे, पोइ जेको गानो तव्हांखे ॿुधाई पियो गौर सां ॿुधजो, ठीकु
1: आहे?
0: महिरबानी, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब आहिनि किथां खां? साईं अलहमदुल्ला, मुंहिंजी तबियत तव्हांजी दुआउनि सां ठीकु ठाक थी वई आहे, शुक्र अलाह पाक जा करम आहिनि। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन।
1: सर, नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी, आरजे रेडियो नेटवर्क झोल।
0: छा हाल आहे नाज़ साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
1: शुक्र आहे अलाह साईं जा एहसान, तव्हां साईं ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो, सभु ठीकु आहे?
0: अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई
1: आहे। माशाल्लाह, काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजा प्रॉम थियनि पिया। मूंखे बि हिकिड़े दोस्त ॿुधायो त तव्हां प्रॉम पिया कयो, छो त तव्हांजी तबियत बहितर कोन्हे, इन करे तव्हांजा।
0: हा, असल में कुझु वक़्त में जेको न थींदो आहे, जीअं तबियत दिलि जेका आहे न बेचई थी वई, पोइ वरी नवां पलक बलक लॻाए हेॾा होॾा ट्यूनिंग थी वई दिलि जी, हाणे VIP थी वियासीं।
1: बराबरि, अलाह साईं रहम कंदो ऐं इनशाला तव्हांजा प्रोग्राम थींदा रहंदा ऐं असां कोशिशि कंदासीं त तव्हांजे प्रोग्राम में एंट्री लॻायूं, हाज़िरी लॻायूं, तव्हां खां परे न रहूं।
0: मां थोराए थो आहियां तव्हांजो साईं, कुर्ब तव्हांजा, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे?
1: साथी गॾु आहिनि कुर्बान अली, ख़ासि कली झंडे मरी वारो सां गॾु आहे, चौहान कुमार कोहली आहे ऐं ग़ुलाम रहीम बलोच आहे, या जेके दोस्त ॿुधनि था हिन वक़्तु मूंखे समाज फरमाइनि था, सभिनी दोस्तनि लाइ मोहबतूं, कुर्बतूं,
0: किरोड़े कुर्ब, किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, GFM 88 रेडियो नेटवर्क तव्हांखे भलीकार चवे थो, मोहबतूं। साईं ॾिसंदासीं त कॉल ते हाणे असां सां गॾु केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, छा हाल आहे?
0: साईं अलहमदुल्ला, केरु साहब आहिनि किथां खां?
2: साईं कश्मोर खां, अॼु अहिड़ी बसि ॻाल्हायां थो।
0: कश्मोर खां
2: हाजी अलीबख्श।
0: हाजी अलीबख्श साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़। अलहमदुल्ला, अलाह साईं जा एहसान आहिनि। अवां छो त आख़िरी लमात में शो में कॉल कई आहे त मां थोरो मुख़्तसर जल्दी पुछी वठां, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? हा, महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हांजा। महिरबानी, लख थोरा। कश्मोर खां असांखे कॉल पहुती, सॼी सिंध मां कॉलूं अचनि पियूं, कॉलूं लातैदाद आहिनि, पर कॉल्स सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधायूं त मुंहिंजो हीउ शो सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ॿुधण न विसारिजो, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम स्टूडियोज मां इनशाला। अमीम चओ इनशाला, छो त हयाती जो मेलो आहे न, जे हयाती हूंदासीं तव्हांजा आहियूं, जे न रहियासीं त ग़लती गुस्ताखी माफ़ करे छॾियो। चङो यारो यारी मोकिलाए थो अवां खां अवां जो यूनुस बकारी, इन दुआ सां त जिते बि अवां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादनि, वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमनि जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दरु बणजनि। अलाह निगेबान।

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। KTN न्यूज़।

सिंध असेंबलीअ जी अहम इजलास में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङो न करे सघिया। वॾनि वॾनि तोप माण्हुनि इहो चयो, अवां नवनि सूबनि जो बहस छेड़े छॾियो आहे, पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाहिद हल असेंबलीअ में बहस कराइणु आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी। नई पिंडीअ में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जलूसनि में फ़ैसिलो थींदो। जेसि ताईं असां मां हिकु बि एम पी ज़िंदा आहे, सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, हीअ सिंध हमेशह रहंदी।

सिंध असेंबलीअ में रिथ पेश करण जो मक़सदु सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करणु आहे। सिंध जे अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो। सोशल मीडिया उन जो गवाह आहे। जिन खे हिन धरतीअ पनाह ॾिनी उहे ई मादरे वतन ऐं माउ जो टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा ई कंदा। पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़े जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पीपल्स पार्टी मेंबर राजा रज़ाक बलो चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़, तहज़ीब ऐं सुञाणप आहे। सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुरिजे त जेसिताईं हिकु बि हिलाली पुट मौजूदु आहे त सिंध विरिहाइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि आकाउनि खे ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फॉरम 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौरु अहिड़ी ॻाल्हि करणु न घुरिजे। खुरम करीम सूमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुटु केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ बि तयारु आहियूं, पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरिहाइण न ॾींदासीं।

0: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट
1: रहे थे
0: और बाकी तमाम पखंड के मुकाबले में जबरदस्त रॉयल इन्वर्टर फैन साथ जिंदगी भर का
2: सोना से है कामयाबी
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

इलाकाई अमुन ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ इस्तनबुल में मका दिफ़ाई मुआहिदे बाबति कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्की जे परॾेही ऐं दिफ़ाई वज़ीरनि सां गॾु अस्करी क़यादत जी बि शिरकत। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जे हथियारबंद फ़ौजनि विच में हम आहंगी वधाइण, दिफ़ाई सनत में गॾियल पैदावार, तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ जे शोबनि में सहकार जो जाइज़ो वठण बाबति अहम फ़ैसिला। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे तुर्की जे परॾेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त त्रिमुल्की इतिहाद आलमी कानून जी बुनियाद ते क़ाइमु आहे ऐं हीउ इतिहाद कंहिं मखसूस मुल्क ख़िलाफ़ु नाहे। इतिहाद जो ढांचो क़ाइमु करण जो अमल शुरू कयो वियो आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा।

0: अगर हिम्मत है तो इस असेंबली में रेजोल्यूशन लाओ, नहीं है हिम्मत किसी में, इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किए और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले, कोई कोर्ट के फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता, फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली के अहम इजलास में नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते बहस, वे वजीर मुराद अली शाह चयो त अंग्रेज बे सिंध जो विरांगो न करे सग्या, वडन वडन तोब मानुन इयो चयो अवन नवन सूबन जो बहस छेड़े छड़ियो आहे, पर सबनी जो मुंह बंद कराण जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराण आहे। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडी में थींदड़ सेमिनारन या जलसन जलूसन में फैसलो थींदो, जेस ताईं असां मां हिकु बि एम पी ए ज़िंदा आहे सिंध जो विरांगो न थींदो, सिंध हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु रहंदी, कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो, ही सिंध हमेशह रहंदी।
2: सोलर ऐं बैटरी
3: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अगर हिम्मत है तो इस असेंबली में रेजोल्यूशन लाओ, नहीं है हिम्मत किसी में, इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किया और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले, कोई कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता, फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली के अहम इजलास में नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ से बहस, वे वजीर सैयद मुराद अली शाह है अंग्रेज भी सिंध जो विरांगो न कर सकया, वडन वडन तोप मानुन यो चयो अवां नवन सूबन जो बहस छेड़े छो है, पर सभी जो मुंह बंद कराने जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराण है। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडी में थींदड़ सेमिनार या जलसन जलूसन में फैसलो थींदो, जेस ताईं असां मां हिकु बि एम पी ए जिंदा आहे सिंध जो विरांगो न थींदो, सिंध हिकु आहे हमेशह हिकु रहंदी, कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो, वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशह रहंदी।

0: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
1: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
2: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध के अवाम के सूरत हाल का आगाह करण है। सिंध की अवाम पैंजो रद्द अमल दे छो है। सोशल मीडिया उन जो गवाह है जिनके इन धरती पनाह दिनी उ मादरे वतन और माओ जहा टुकड़ा करण की गाल कर रहा है। सिंध के मुस्तकबिल जो फैसलो सिंध जो अवाम ए चूंडल नुमाइंदा कंदा। पीपुल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में खिताब। पीपुल्स पार्टी मेंबर राजा रजाक बलोच तो सिंध असा जो वजूद है, पंजी वजूद की विरासत किए था कर सकूँ। सिंध एक तारीख तहजीब और सुणप है। सिंध की विरासत जो शोशो छड़ींदड़न के याद रखन घुर्जे तो जेस ती एक बे हलाली पुट मौजूद है तो सिंध विरायजी न संगदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो तो पांजन आकाउन के खुश करण लाए सिंध की विरांगे जो गालियों कोई पी वन। फारम 47 ते अचण वालन के इखलाकी तौर अड़ी गाल करण भी न घुर्जे। कुरम करीम सुमरो चयो तो खबर पेजी वेंदी तो सिंध जो हिलाली पुट केर आए। असं गोलियों खाण लाए तैयार आयूं पर पंजी माओ सिंध के विरण न दींदासी। मौसन नकवी केर थींदो आहे जेको सिंध जे विर्च करण वारो। असेंबली में वेठल असा सभिनी के इस्लामाबाद के पैगाम देणो आहे तो सिंध एक है, हमेशा एक रहंदी, दुनिया जी का भी ताकत उनके विराए न थी सके।
3: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है, एन आईन के मुताबिक कराची एक डिस्ट्रिक्ट का। निसार गोड़ो साहब ने भी बताया, सर मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा। मैं मुराद अली शाह साहब की बात पे इत्तेफाक करता हूँ, सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
0: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते, डिस्ट्रिक्ट हो सकते, डिवीजन हो सकते, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है, 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
2: सिंध असेंबली में नवन सूबन बाबत महमली रिथ पेश करण ते एमक्यूएम मेंबर्स निसार खोड़ो जा थोरा मनिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध खिलाफ ना आहियूं, सिंध जो एक इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर ही कहिड़ो दलील आहे त इंतिज़ामी यूनिट्स ठाहिणी न ॾींदासीं? असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे, सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमरानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रिहान अक्रम चयो त नवनि सूबनि बाबति महमली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करण जो मौक़ो मिलियो आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो 1973 ईस्वीअ में आईन में नवनि सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो हो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नवनि सूबनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरांगे बाबति क़रारदाद आणण बदिरां पंहिंजे गवर्नेंस ठीकु कयो। सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुरिजनि। आमिर सिद्दीकी जो चवणो हो त को बि नथो चाहे त सिंध विरिहाइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया। आम सिंधी माण्हू जी हालति कहिड़ी आहे? पंहिंजा महल ठाहे छॾिया अथऊं।

इलाकाई अमून इस्तेहकाम के अती ॾियण लाइ इस्तनबुल में मका दिफ़ाई मुआहिदे बाबति कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे परॾेही ऐं दिफ़ाई वज़ीरनि सां गॾु अस्करी क़यादत जी बि शिरकत। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जे हथियारबंद फ़ौजनि विच में हमाहंगी वधाइण, दिफ़ाई सनत में गॾियल पैदावार, तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ जे शोबनि में सहकार जो जाइज़ो वठण बाद अहम फ़ैसिला। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त टे मुल्की इतिहाद आलमी क़ानून जी बुनियाद ते क़ाइम आहे ऐं हीउ इतिहाद कंहिं मखसूस मुल्क ख़िलाफ़ु नाहे। इतिहाद जो ढांचो क़ाइमु करण जो अमल शुरू कयो वियो आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पशकियान विच में मुलाक़ात। बिश्केक में शंघाई तामन तनज़ीम जी सरबराही इजलास जे मौक़े ते थियल मुलाक़ात दौरान पाक ईरान बे तरफ़ां लाॻापन ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि ते सहकार समेत ताज़ी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि। बे तरफ़नि लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणाइण जो बि अज़म।

कुछ अरसे की खामोशी बाद अमेरिका ईरान जा एक बे ईरानी बेट लारक से मिजाइल हमलो ईरान जो जवाब में उर्दन यूएई में मौजूद अमरीकी अड्डन से वार आबनाए हुरमज में अमरीकी ड्रोन पे तबाह करण की दावा अमरीकी सेंटकॉम चुना है आबनाए हुरमज में बारूदी सुरंगू विछाने वाली कोशिश रोकने ला ईरानी लारक बेट से हमलो किया है। पासदारान इनकलाब अमरीकी हमले की तस्दीक कदे अमरीकी हमले में केतरा ही फौजी शहीद थिया हमले के जवाब में उर्दन यूएई में मौजूद अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो आबनाए हुरमज मथा उडाम कदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 के भी किराया वो है। ईरानी बेट लारक के तबाह कर छो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से हमले की तस्दीक कदे है तो ईरानी बेट लारक के तबाह किया वो ईरानी सदर मसूद पशकियान खिते में बदमनी अदम इस्तेहकाम कहीं भी मफाद में ना है। तेहरान जंग नो चाहे पर जारियत जो मोहटो जवाब दी

0: एक तो सोशल मीडिया ने मेरा बात पक्की मंगनी शादी करवा दी है। मैं वाजे कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही मैं किसी प्रिंसेस ग्लोरिया को जानता हूँ। असल में ये सोशल मीडिया तमाशा असल इश्यू से अवाम का तवज्जो हटाने के लिए छाले जाते हैं।
1: बिलावल भुट्टो सरदारी पंजी मंगनी वारन खबरों के रद्द कंदे समूरे ड्रामे के पिम्साने समेत असल मामलन तां ध्यान हटाने की साजिश करार दे छो। बिलावल भुट्टो चयो तो सोशल मीडिया ते मुझी मंगनी ए शादी भी कराए छी और कें भी शहजादी ग्लोरिया के नतो सुणा। सोशल मीडिया ते अड़ा तमाशा असल मसलन तां ध्यान हटाने लाय कया वेंदा आहिन। एक वजीर पाकिस्तान जो गोरबाचोफ बणजण मुल्क जा टीह टुकड़ा करण चाहे तो, जै वजीर का एक अस्पताल में नथी संभालजे वो वरी लाहौर के व्यापारन के चवे तो सूबा ठायो ए उनन के हलायो। इहो उन वक्त एणू गालियों करे रहयो आहे जदे सिंध असेंबली मां इन मामले ते एक जुरतमंद मौकिफ अख्तियार करे रही आहे।

0: सानिया टिम्स में 14 बच्चे फौत हुए हैं पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में एक वजीर जो कि पाकिस्तान का गॉर्बचोव बनना चाहता है हमारा मुल्क को 30 टुकड़े करना चाहता है खुद एक हॉस्पिटल नहीं संभाल सकता उस वक्त जब लाहौर का एक वजीर लाहौर के बिजनेसमैन से कह रहा है कि सूबे बनाओ चुनाव जब सिंध असेंबली एक बहादुर स्टांस लेता है अपने आप को एक सर्व करता है कि ये बातें ना सड़क पर हो सकते हैं ना लाहौर की बिजनेस फोरम में उस असेंबली जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले शामिल हुआ उसी असेंबली में बात होगा और फैसला होगा अगर मेरी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला हुआ मेरा खानदान से ही ऐलान होगा तब तक असल इश्यूज पर ध्यान दे और सोशल मीडिया तमाशा को इग्नोर करे
1: सिंध हुकूमत मलिर जे एजुकेशन सिटी में ॾेही थोरे परॾेही कंपनियुनि लाइ आई टी सिटी क़ाइमु करण जी रिथाबंदी करे छॾी 1000
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जीए एफएम 90.8

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।